0: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
1: CTV and C5 proudly present हमारे राम produced by Felicity Theatre India और दुबई में हाउसफुल शोज के बाद अब पहली बार लंदन में देखिए आशुतोष राणा को एस रावण और राहुल आर भुचर को प्रभु श्री राम के रूप में रामायण की अनडिस्कवर्ड स्टोरीज लाइव ऑन स्टेज 9 से 12 जुलाई Eventim Apollo Hammersmith हमारे राम
2: Book your tickets now on eventimapollo.co.uk and use code हमारे राम 10 for a 10% discount on all shows and tickets
1: exclusive radio partner like Radio.
3: श्री जगन्नाथ सोसाइटी यूके वार्मली इनवाइट्स यू टू रथ यात्रा 2026 अ डिवाइन सेलिब्रेशन ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ सैटरडे 18 जुलाई सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक नवनाथ सेंटर हीज UB3 1AR में भजन आरती सैक्रेड रथ पुलिंग और प्रसाद का लाभ जरूर ले इवेंट फ्री है लेकिन रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है फ्री पार्किंग भी सिर्फ रजिस्ट्रेशन के साथ अवेलेबल होगी रजिस्टर नाउ एट shrijagannath.uk/events/rath-yatra2026 जय श्री जगन्नाथ
4: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज रेडियो डिजिटल या इवेंट सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड जल्दी करिए कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com
0: लाइका गोल्ड पर हर रात की यही रीत पुराने मगर सदा

ना जला, मुझको गुस्सा ना दिला, तुझसे फरियाद करो ले तेरे पाँव परो, कहना मेरा मान ले तू, ये भी अब जान ले तू, ये भी अब जान ले तू, जान ले तू, जान ले तू, थाकी गयो फरी पर नहीं समझ तो बेशरम। हाँ, अब भी अगर तू चुप न हुआ तो

0: is Leica Gold.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
2: देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग,
1: डेजर्ट सफारी,
2: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
1: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
2: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग।
0: कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
3: साउथ हॉल ट्रेवल at all protected.
4: You know how fans shout at football matches?
5: Oh, wake up!
4: That's because sound is the most effective way to tell the players they're rubbish. Works in advertising too. Because when you amplify your advertising using radio, your campaign is 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
6: Taza kare apni yaadein. Leica Gold ke saath.

से परी ये सुबह मस्त भरी यूं हंसी जैसे परी। किस्मत को शायद याद आ गए हम, किस्मत को शायद

कोय। मन्ने सुध होवे मन बुद्ध, मन्ने सगल पवन की सुध। मन्ने मोह चोटा ना खाए, मन्ने जम के साथ ना जाए। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोय। मन्ने मार्ग ठाक ना पाए, मन्ने पत्स्यों प्रगट जाए। मन्ने मग ना चले पंथ, मन्ने धर्म सेती संबंध।

होए लख दरियाओ कुदरत कवन कहां विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पक्षार असंख मोन लिवलाए तार कुदरत कौन कहावी।

मूर्ख अंध गोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भख खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई भलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

गावन पंडत पढ़न रखी सर, जुग जुग वेदा नाले गावे मोहनिया मनमोहन सुरगा मच प्याले, गावन रतनु पाए तेरे अड़सठ तीरथना।

तेरे भगत रसाले। होर केते गावन से मैं चितनावन, नानक क्या विचारे। सोई सोई सदा सच साहिब, साचा साची नाई। है भी होसी जाए ना जासी, रचना जिन रचाई। रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी, माया जिन उपाई। कर कर वेखे की ता अपना, जिव तिस दी वड्याई।

नाहत जुग जुग एको वेश भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजे नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध

कर कर वेखै सृजनहार, नानक सच्चे की साची कार, आदेश तिसे आदेश, आद अनिल अनाद अनात, जुग जुग एको वेस, एक दूजी बोला खोवें लख होवें लखवीस, लख लख गेड़ा आखियें एक नाम जगदीश।

जोर जोर ना जीवन मरण है जोर, जोर ना राजमाल मंसोर, जोर ना सुरती ज्ञान विचार, जोर ना जुगती छुटै संसार, जिस हथ जोर कर वेखै सोए, नानक उत्तम नीच ना कोए, राती रुती चित्ती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथे सोहन पंच परवान, नदरी कर्म पवै निशान, कच पकाई उथे पाए, नानक गया जापै जाए, धर्म

0: Quaker Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
1: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
2: TravelHub, best service with unbeatable price.
1: At all protected.
2: Visit TravelHubWorld.com.
3: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए. दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाईलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
4: विजिट मंत्रा हॉलीडेज .co.uk और कॉल 0203-773-633 नाउ. एप्टा बॉन्डेड. मंत्रा हॉलीडेज. व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा?
5: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
6: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
5: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
6: And you didn't pay those massive roaming charges?
5: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
7: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
8: वेलकम टू द जंगल.
9: फिल्म बिल्कुल फेक.
8: हमारी फिल्म आर्मी वाली
10: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है.
9: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो.
8: और स्टार कास्ट है
9: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्शद वारसी, परेश रावल एंड यू स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास.
11: अन्ना कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
9: वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास 26 जून.
12: तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना
13: मैं किस लिए फिल्म में?
9: Location, location, location.
14: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
9: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
14: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
9: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
14: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
14: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
9: High appreciation.
14: In Dubai.
15: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
16: At Breast Cancer Now, we know checking your breasts can feel daunting. But it's as simple as TLC. Touch, look, check. Touch your breasts, look for any changes, check anything unusual with your GP. Anyone can get breast cancer, so it's important to check yourself regularly. Learn the signs and symptoms of breast cancer at breastcancernow.org/TLC.
0: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Seven stations. One podcast. One mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0207 132 1458 or sales at leicamedia.co.uk.
17: Hello there, my name is Deep Raja and I do the Weekend Breakfast Show from 7 a.m. Saturdays and Sundays. Leica Gold in London, the Midlands and Manchester.

0: ये है लाइका गोल्ड। ट्रेवल हब वर्ल्ड डॉट कॉम कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब वर्ल्ड डॉट कॉम। फ्लाइट एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब वर्ल्ड डॉट कॉम।
1: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: विजिट ट्रेवल हब वर्ल्ड डॉट कॉम।
2: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
3: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
2: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk. Show hosted by Bina Mistry.
3: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
5: Located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 02 03963-5757. Greens by Daniel. Prime location.
4: High appreciation.
5: In Dubai.
3: Kajal's Couture. For every celebration, every moment, and every unforgettable entrance.
6: Discover Kajal's Couture Southall. The grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall. UB1 1LR.
3: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewelry, accessories, and stylish outfits for men and women.
6: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
3: Kajal's Couture, Southall, where every occasion finds its perfect style.
6: Visit kajalscouture.co.uk.
7: जदों भी कॉमेडी मूवी दी गल हुंदी है तां एक मूवी दा नाम हमेशा आंदा है। ओ मूवी जिने सबनु हसा हसा के लोटपोट कीता।
8: की कह रहे हो?
7: ओ मूवी जिदी स्टोरी ने ब्रेन रॉट कीता।
8: की कह रहे हो?
9: गिप्पी ग्रेवाल, बिनु टिनो, सरगुन मेहता फिर तो लेके आ रहे ने पंजाबी सिनेमा दी सब तो बड़ी फ्रेंचाइज कैरी ऑन जट्टा 4 जिथे एडवोकेट टिलो फिर कहेंगे
7: This 26 June, Carry On Jatta 4 de naal theaters honge Laughter da Stadium. Kyunki eh sirf film nahi, eh Laughter da Festival hai.
10: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
11: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को। स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course लंच सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड। तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823।
12: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
13: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
12: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
13: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
12: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
13: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
14: Discover Malta and Gozo with a twin center island escape. Fly from a choice of UK airports year round and enjoy 3 nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and Holidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
15: 24 days South America in November or April. First 10 passengers up to 300 off. Call Sona Tours on 0208-951-0111 or visit sonatours.co.uk.
0: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
16: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. Start with BAPS's Swami Narayan Mandir Darshan in Paris, then explore Europe's most iconic destinations. Call today on 0208 900 2323.

0: लाइका गोल्ड
1: ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com
2: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड
2: विजिट ट्रेवल हब world.com
3: चावल हो बेस्ट सब करे टेस्ट दिशा राइस का है जमाना दिशा बासमती राइस
2: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरी सिंग्सबरीज कच्चा बाजार समीर बाजार मोर फूड्स सीरा साउथ हॉल डेगनम सुपरमार्केट ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाऊ एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड दिशा राइस कम डाउन एंड टेस्ट द डिफरेंस
4: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344 Our line.
5: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर
6: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना 5-course lunch सिर्फ £35 जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड तो देर किस बात की बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 0730098823
7: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय
8: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस
7: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री परफेक्ट फॉर कैफेज रेस्टोरेंट्स ऑफिसेज शॉप्स पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस
8: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम
7: रॉयल चाय ब्रूड फॉर बिजनेस
8: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com limited offer terms and conditions apply
9: think you might be overpaying for card payments most businesses don't realize until they compare send your latest statement to tw pays and get a free comparison quote with the reply within 24 hours visit twpays.com/leica tw pays helping businesses keep more of what they earn
10: backstage siblings first ever uk performance happening on the 9th and 10th of october 2026 at sklpc northolt get your tickets now at sklpc.com/bss
11: 10 days South Africa every month from November to March. Book before the end of this month and get 200 off. Visit sonatours.co.uk or call 0208-951-0111.
12: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
13: Sounding better than ever in the sunshine. This is Leica Gold.
14: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. From Europe to faraway places, the same delicious Indian food. Wherever you go, that's the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.

0: जी हाँ, आशा भोसले की आवाज़ में समाधि फिल्म से लिया था ये गाना। और उससे पहले आपने आर डी बर्मन की आवाज़ में महान फिल्म का गीत सुना। लीजिए दो गीतों के साथ एक बार फिर से आज के शो की शुरुआत हो गई है। आप सुन रहे हैं रवि शर्मा जी का मनोरंजन प्रोग्राम, जहाँ पर ऋतु शर्मा एक बार फिर से दे रही है आपका साथ। और ये साथ चलता रहेगा आपसे लेकर दोपहर के पूरे एक बजे तक। मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल अच्छे हैं, मज़े में हैं और मौसम का मज़ा ले रहे हैं। तो बस मौसम के साथ साथ हमारे यहाँ से बजने वाले गीतों का भी मजा लेते रहिए।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो हमेशा की तरह आज भी £1 आपको देगा 124.05 भारतीय रुपए। लेकिन याद रखिए, ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा वाया SBI ब्रांच ऑनलाइन और बाई यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। और हाँ, जून के खत्म होने से पहले पहले आप £75 का वाउचर एवरी डे जीत सकते हैं व्हेन यू सेंड ओवर £1,000। ऑल्सो अ 1 ग्राम गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर £2,000। बट टर्म्स एंड कंडीशंस डू अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai Leica Gold, 10:35 AM.
3: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
0: तो आपको बता दें कि आज फीफा वर्ल्ड कप में जो मैच है वो है किसके बीच में? आज इक्वाडोर और जर्मनी के बीच में मैच होने जा रहा है। लेकिन आपको याद दिला दें कि डोंट फॉरगेट यू कैन गेट योर 15 मिनट्स फ्री लीगल एडवाइस विद अवर स्पॉन्सर्स रैक लॉ इफ यू मेंशन लाइका।
1: दिस अपडेट वाज स्पॉन्सर्ड बाय रैक लॉ सॉलिसिटर्स। कॉल 0203-345-2000 और विजिट raklaw.co.uk। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव।
4: Do it for your wife, who told you to pick up bread, but instead you picked up Fred, your grandson, again. And now your daughter is calling because he missed football. That's the fourth time this month. You can wave his future career goodbye. If you don't do it for you, do it for your wife and little Freddy.
5: Book a free test today at bootshearingcare.com and take advantage of our interest-free payment plans. Boots, with you, for life. T's and C's apply.
6: ये है Leica Gold.
7: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.

0: सेट को फूड कंटेनर्स टोटल सेटिस्फेक्शन
1: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
2: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर
1: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
2: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन
1: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स
2: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50+ अमेनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी
1: एंड द बेस्ट पार्ट टाउनहाउसेस एंड विलास ग्रीन्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £711,000
2: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
1: high appreciation
2: in Dubai.
1: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर
3: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना 5-course lunch सिर्फ £35 जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफर्ड तो देर किस बात की बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823
4: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
5: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागसन
6: वेलकम टू द जंगल
1: फिल्म बिल्कुल फेक
6: हमारी फिल्म आर्मी वाली
7: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है
1: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो
6: और स्टार कास्ट है
1: अक्षय कुमार सुनील शेट्टी अर्शद वारसी परेश रावल एंड ह्यूज स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास
8: अन्ना कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या
1: वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास 26 जून
9: तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना
10: मैं किस लिए फिल्म में
11: Kajal's Couture for every celebration, every moment, and every unforgettable entrance.
12: Discover Kajal's Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
11: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewelry, accessories, and stylish outfits for men and women.
12: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
11: Kajal's Couture Southall, where every occasion finds its perfect style.
12: Visit Kajal's Couture. Co.uk.
13: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
14: Mango season has arrived. Here also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
13: Jaimin Foods Mango Pulp. Available now.
15: Be part of a historic grand opening.
16: Experience the newly inaugurated BAPS Swaminarayan Mandir in Paris, a once-in-a-lifetime spiritual journey.
15: Travel with your family and witness this divine occasion, along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
16: Departure, 5th of September. Call now on 02-03-773-633.
15: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
17: Feel Good Track. Brought to you by Dairy Valley.
18: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: श्वेता जी की आवाज में हम सभी की फेवरेट फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से था ये गाना। और एक बार फिर से याद दिला दूं कि आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद रेडियो जो है लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स, और जहां पर रितु शर्मा एक बार फिर से हाजिर है आप सबका साथ देने के लिए सिटिंग इन फॉर रवि शर्मा जी।
1: Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: To sabhi sunne walon ko mera pyar bhara namaskar, mohabbat bhara salam. Aapke dheron messages hamesha ki tarah aaj bhi mujh tak pahunch gaye hain. Thank you Tochi Paneser ji, Hetal Solanki ji, Mrs. Sheikh Seher, Himanshu Patel, Ajaz Chasham se, Belgium se Preeti, वियाना से अनिल जी, अर्जन जी, वंदना, सुनील कपूर, प्रेग्ना, जासू जी, शेखर जी, मृदु जी और जितने भी साथी जो इस समय गार्डन में बहने वाली ठंडी हवा का मजा ले रहे हैं, क्योंकि फिलहाल हवा इतनी गर्म नहीं है। सुबह और शाम को आजकल मौसम अच्छा हो जाता है, थैंक गॉड। लेकिन दोपहर में तो आज भी गर्मी है, इसलिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आराम से फैन के आगे या फिर एसी के नीचे बैठ जाइए, हमारा रेडियो लगाइए और एंजॉय कीजिए, गर्मी के मौसम का लुत्फ उठाइए, यही कहूंगी। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आपको दुनिया के ताजा समाचारों से अवगत कराते हैं।
1: मनोरंजन विथ रवि शर्मा।
0: तो समय हो गया है आज के प्रमुख समाचारों का, और आज सबसे पहले खबर आ रही है जो बड़ी दुखदायी खबर है। वेनेजुएला की राजधानी काराकस में कल शाम भीषण भूकंप आया। इसमें अब तक 32,000 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि मरने वालों का आंकड़ा हजारों तक पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए आपातकाल की घोषणा कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया है और हर संभव मदद की पेशकश की है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका वेनेजुएला में तुरंत खोज और बचाव दल, चिकित्सा संसाधन और मानवीय सहायता तैनात कर रहा है। वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने एक्स पर पोस्ट कर मदद के लिए हाथ बढ़ाने के प्रति भारत के प्रति आभार जताया है। उन्होंने लिखा है कि भारत ने जो मुश्किल वक्त में एकजुटता दिखाई है वो हमारे लोगों के बीच सहयोग की भावना के अनुरूप है। हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मिले इस समर्थन को स्वीकार करते हैं और हमारे साथ दिखाई गई एकजुटता के लिए हम आभारी हैं। उधर ईरान से खबर आ रही है कि ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड RRGC ने कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित आवागमन केवल उनके साथ समन्वय और जो रास्ते ईरान ने बताए हैं उसी के जरिए संभव है। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार IRGC की नौसेना ने हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही के लिए एक नए मार्ग की घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह मार्ग स्वीकार्य नहीं है और पूरी तरह खतरनाक है। उन्होंने बताया कि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने के लिए केवल वही मार्ग वैध है जो ईरान ने घोषित किए हैं। जहाजों को केवल चैनल 16 के माध्यम से ही संपर्क करना चाहिए और ईरानी सैन्य बलों के साथ समन्वय स्थापित करके ही आवागमन होना चाहिए। अब कुछ खबरें सुनाते हैं आपको भारत से रिलेटेड। आज भारत में पेपर लीक पर देशव्यापी प्रदर्शन हुआ है। कांग्रेस और विपक्ष द्वारा देश में हाल ही में हुए पेपर लीक मामलों को लेकर आज 25 जून से राष्ट्रव्यापी प्रोटेस्ट शुरू किया जा रहा है जो आगे चलकर 9 अगस्त को दिल्ली चलो आंदोलन में बदलेगा। महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। बाल विवाह पर लगाम लगाने के लिए महाराष्ट्र में अब शादी के कार्ड पर दूल्हा और दुल्हन की जन्म तिथि छपाना अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा गया है। साथ ही साथ धर्मांतरण विवाद पर भी विधानसभा में कड़े कदम उठाने की बात कही गई है। पंजाब में मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जा रहा है। पंजाब में आज से वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन का विशेष अभियान शुरू हो रहा है, जिसमें 24,000 से अधिक बीएलओ घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। इसके अलावा सीएम भगवंत मान ने सरपंचों का मानदेय यानी कि सैलरी बढ़ाने का भी ऐलान किया है। और आज देश के कई हिस्सों में यानी कि भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट है। साथ ही साथ आज निर्जला एकादशी का व्रत भी मनाया जा रहा है, जिसे लेकर सुबह से ही बाजारों में और मंदिरों में रौनक है। यही थे आज के प्रमुख समाचार और अब समाचार समाप्त होते हैं।
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: कल्याण जी आनंद जी के म्यूजिक पर था ये खूबसूरत सा गाना, जिसे लिया था अमिताभ बच्चन की फिल्म से। और ये फिल्म उन दिनों की है जब अमिताभ बच्चन सुपरस्टार या फिर यंग एंग्री मैन नहीं बने थे, और इस फिल्म में उनकी हीरोइन थी शर्मिला टैगोर। यानी कि जब अमिताभ बच्चन स्ट्रगल कर रहे थे तो माला सिन्हा, शर्मिला टैगोर, वहीदा रहमान और उस जमाने की जितनी भी बड़ी बड़ी हीरोइंस थी, सब ने अमिताभ बच्चन के साथ एज ए हीरोइन काम किया था, लेकिन अमिताभ बच्चन की फिल्में हिट नहीं हो रही थी। लेकिन जब जया बच्चन का उन्हें साथ मिला और फिल्म आई जंजीर, उसके बाद अमिताभ बच्चन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये फिल्म मैंने देखी है, कहानी बहुत अच्छी है, अच्छी फिल्म है, ये गाना भी बहुत सुंदर है, लेकिन न जाने क्यों ये फिल्म हिट नहीं हुई थी। एनीवेज, इस गाने को आप सबने पसंद किया है और आपके मैसेजेस मिले हैं। हरी श्रुता जी, स्वागत है आपका। अरुणा जी पूछती हैं मैं कैसी हूँ। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, लेकिन मैं थोड़ी परेशान हो जाती हूँ जब रोड्स पर ट्रैफिक लाइट लग जाती हैं, जब कोई काम शुरू कर देते हैं काउंसिल वाले, तो वो जो ट्रैफिक लाइट्स होती हैं ना, वो हमारा बहुत सारा टाइम बर्बाद कर देती हैं क्योंकि वो बहुत देर में ग्रीन होती है और हमारा जो शेड्यूल होता है वो बदल जाता है। एनीवेज, आज जैसे तैसे करके मैं टाइम पर पहुंची हूँ, लेकिन मैंने डिसाइड किया है कल से और आधा घंटा पहले पहुंचूंगी ताकि लास्ट मोमेंट पर जो पैनिक होता है ना, वो सब ना हो। तो आज मेरी हालत कुछ ऐसी है, लेकिन अब ठीक हो गई हूँ, यहाँ पर आ गई हूँ स्टूडियो में, आप सब मेरे साथ हैं तो क्या चिंता की बात। थैंक यू, स्वागत है अरुणा जी आपका हाल चाल जानने के लिए। गिरीश जी भारत से हमारे साथ हैं, रंजन जी हमारे साथ हैं, थैंक यू। ये है हमारी सुमित्रा रावल जी, वुडवर्ड ब्रिज से जोड़ रही सुन रही हैं, और थैंक यू कहती हैं, मैं और मेरे हस्बैंड बिपिन जी कभी भी चिंतन हम मिस नहीं करते हैं, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू, स्वागत है। थैंक यू परिता जी, थैंक यू मृदु जी और जितने भी साथी हैं, सभी के बारे में बात करूंगी, लेकिन पहले ये बता देती हूँ।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes. This is Leica Gold. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: तो हॉलीडे जाने की सोच रहे हैं, कहीं ठंडी जगह पर जाना चाहते हैं, तो हम आपको बता दें कि आप ट्रैवल बुक कर सकते हैं, लेकिन साउथॉल ट्रैवल आपको बहुत खुशी के साथ अनाउंस करने वाले हैं कि दुबई पर जो रेस्ट्रिक्शंस लगे थे वो ख़त्म हो गए हैं और अब आप दुबई जा सकते हैं। साउथॉल ट्रैवल के साथ मोस्ट कॉम्पिटिटिव डील्स बुक करा सकते हैं, उन्हें फ़ोन कीजिए 0208-574-8410 पर, और ये सब कुछ एट ऑल प्रोटेक्टेड है।
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
2: Do it for your wife, who told you to pick up bread, but instead you picked up Fred, your grandson, again. And now your daughter is calling because he missed football. That's the fourth time this month. You can wave his future career goodbye. If you don't do it for you, do it for your wife and little Freddy.
3: Book a free test today at bootshearingcare.com and take advantage of our interest-free payment plans. Boots, with you, for life. T's and C's apply.
4: Yeah, like a gold.
5: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com।
6: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
7: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
6: विजिट TravelHubWorld.com।
8: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉग के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं।
9: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
7: Lotto from the National Lottery now gives you two chances to win with every ticket. So it could be you, and it could be you. You, and then the same you, again. You. One ticket, two chances to win. New Lotto. It could be you, and it could be you. See website for Lotto changes. Rules apply. Players must be 18 or over.
10: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
11: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
10: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk. Show hosted by Bina Mistry.
11: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
12: चावल हो बेस्ट सब करे टेस्ट दिशा राइस का है जमाना दिशा बासमती राइस
13: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरी सिंग्सबरीज कच्चा बाजार समीर बाजार मोर फूड्स सीरा साउथ हॉल डेगनम सुपरमार्केट ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाव एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड दिशा राइस कम डाउन एंड टेस्ट द डिफरेंस
14: CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith, Hamari Ram.
15: Book your tickets now on eventimapollo.co.uk and use code HamariRam10 for a 10% discount on all shows and tickets.
14: Exclusive radio partner, Like Our Radio.
16: Location, location, location.
17: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
16: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
17: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
16: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
17: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
16: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
17: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
16: High appreciation.
17: In Dubai.
18: At Breast Cancer Now, we know checking your breasts can feel daunting. But it's as simple as TLC. Touch. Look. Check. Touch your breasts. Look for any changes. Check anything unusual with your GP. Anyone can get breast cancer. So it's important to check yourself regularly. Learn the signs and symptoms of breast cancer at breastcancernow.org/TLC.
19: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
14: Leica Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa, and LeicaGold.com.
20: Hi, मैं हूँ अश्विनी हर शाम 7 से 10 बजे तक सुनिए मुझे लाइक अपोल रेडियो लंदन एंड ग्रेटर मैनचेस्टर इन द इवनिंग शो विद अश्विनी फीचर्स बड़े ही इंटरेस्टिंग अमेजिंग आप सभी के लिए

0: जी, आशा भोसले की आवाज में दो बदन फिल्म से था ये गाना, और इस गाने को सुनकर हमारे एजाज जी कहते हैं कि वी नीड हवा, आपको ठंडी हवा चाहिए, मैं जानती हूँ। अब ठंडी हवा तो मैं आपको दे नहीं सकती, इसलिए सोचा क्यों ना ठंडी हवा वाला गाना सुनवा दिया जाए। कम से कम गाना सुनते सुनते आप ये एहसास तो कर सकते हैं कि हाँ ठंडी हवा चल रही है। वैसे आपको एक बता दूं, सब कुछ दिमाग का खेल होता है, यू नो, सब ब्रेन गेम होता है। अगर आप सोच लें कि आपको गर्मी नहीं लग रही है तो आपको गर्मी नहीं लगेगी, अगर आप सोच लेंगे कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है तो आपको और ज़्यादा गर्मी लगेगी। इसलिए दिमाग को, है ना, मतलब जो परेशानी है उसके बारे में ना सोच के और कहीं भटका लेंगे ना, तो सच में आप गर्मी वर्मी परेशानी सब भूल जाएंगे। ये होता है, ऐसा मैंने ट्राई किया हुआ है। एक बार मैं जब स्विमिंग लेसन्स लेती थी तो पूल में मेरे इंस्ट्रक्टर ने कहा कि जंप करो 6 मीटर डीप में, डीप साइड में। मैंने कहा नहीं, मैं तो डूब जाऊंगी। कहते नहीं डूबोगे, आपको आती है स्विमिंग, आप जंप करो। मेरे पैर जम गए, मैं कूदने को तैयार नहीं। तो वो बोलता है कि नहीं आपको कूदना तो पड़ेगा ही। तो मैंने कहा मैं बैठ के कूद जाऊँ। कहते हाँ चलो पहली बार मैं बैठ के कूद जाऊँ, और मैं बैठ के कूदी, क्योंकि मेरे दिमाग में था कि मैं डूब जाऊँगी। मैं कूदी और मैं डूबने लगी। एंड देन फिर अगली बार मैंने कहा रितु क्या कर रही है, इतना अच्छा स्विमिंग करती है और तू डूब रही है। नहीं, अगली बार मैं डूबूंगी नहीं। देन फिर मैंने अगली बार किया और मैं बिल्कुल नहीं डूबी, और आराम से उस डीप एंड पर मैं स्विमिंग करके निकल के आ गई। तो उस दिन मुझे लगा कि यार ये सच में ब्रेन गेम है, मतलब आपने अगर दिमाग में कुछ ऐसा ठान लिया है कि नहीं ये होना है तो वो होगा, और आपको मन में ये आ गया कि ये नहीं होना तो वो नहीं होगा। लेकिन क्या रितु बात करने लगी, ये चिंतन में करना, ये बातें अभी करने की नहीं है। प्रोग्राम के अगले हिस्से में चिंतन सुनवाऊंगी। आप सब मेरा साथ दे रहे हैं, देते रहिए, अच्छे अच्छे गाने बजाती रहूंगी जिससे आपको गर्मी का एहसास थोड़ा कम हो, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज £1 आपको देगा 124 भारतीय रुपए, 366 पाकिस्तानी रुपए एंड 161 बांग्लादेशी टका।
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: So Gold Rate is £97.28 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
3: ये है
4: लाइका
3: गोल्ड।
4: 105 सुपर हिट शोज पछी हवे लंडन मा आवी रही छे एक धमाकेदार इंटरनेशनल गुजराती कॉमेडी जयज एंटरटेनमेंट लाइने आवी रहया छे सखना रेजो हस्बैंड जी लीना शाह अने समीर शाह साथे हास्यनी फुल गारंटी फ्राइडे 26 जून 27 पाटीदार समाज वेम्बली पार्क मा रातना 8 वागे टिकट्स बुकिंग माटे विजिट करो eventbrite.co.uk कॉल करो वीडियो रामा अथवा कॉल करो मिस्टर बी 07860280655 सखना रेजो husband ji.
5: Dreaming of owning a property in Dubai? Now you don't need to fly thousands of miles to explore the opportunity. Dubai's leading real estate experts are coming to Quality Foods Hayes from the 27th to the 30th of June. Discover luxury investment options, exclusive registration waivers, residency support, and an incredible 0.25% monthly payment plan. Visit the Dubai real estate stand at Quality Foods Hayes. Your future in the sun could start right here. 27th to the 30th of June. See you at Quality Foods Hayes.
6: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
7: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
6: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
7: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
6: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
7: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
6: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
8: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
9: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
8: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
9: गारंटेड।
8: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
9: 02085748410।
8: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
10: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
11: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share, and we give the rest back to you as cashback.
10: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
11: Call 0208 706 0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208 706 0915, or visit cashbackremortgages.co.uk.
10: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.
12: Are we there yet?
13: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
14: Relax, I've booked the Uber already.
13: How? My roaming isn't even working yet.
14: I switched to Simzy before we left London.
13: Simzy? Since when are you the tech expert?
14: Since I decided I want a stress-free holiday.
15: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
16: T's and C's apply.
17: Great news, Tariq Halal Raiders Lane is now open. Come and grab our incredible opening offers. Fresh chicken legs for just £2.99 per kilo or 5 kilos for only £10. But hurry, this amazing deal is available while stocks last. Plus, you'll find plenty of more fantastic offers in store. Visit us today at Tariq Halal Raiders Lane, 287 Raiders Lane, Pinna, HA5 5EJ. Quality, value and freshness only at Tariq Halal Raiders Lane.
18: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
19: At Breast Cancer Now, we know checking your breasts can feel daunting. But it's as simple as DLC. Touch, look, check. Touch your breasts, look for any changes, check anything unusual with your GP. Anyone can get breast cancer, so it's important to check yourself regularly. Learn the signs and symptoms of breast cancer at breastcancernow.org/DLC.
20: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए? लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज। रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड। जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com.
21: Wake up to Kajal on breakfast at 6 a.m. and drive back with Sandy Shah at 4 p.m. Laika Gold.

गुड मॉर्निंग। आज है थर्सडे का दिन, 11:03 हो चुके हैं और ये है समय चिंतन का। चिंतन यानी कि आज का विचार। सालों से चिंतन आप रवि शर्मा जी के साथ सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इस शो में मैं ऋतु शर्मा आपके साथ हूँ और सुनवाने वाली हूँ चिंतन। चिंतन में आज एक छोटी सी कहानी है जो हमें बहुत कुछ सोचने और समझने पर मजबूर करती है। एक बार की बात है, एक शहर में आनंद नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान और पढ़ा लिखा व्यक्ति रहता था। वो हमेशा किसी न किसी गहरी सोच में डूबा रहता था। उसका मानना था कि जीवन का कोई बहुत बड़ा रहस्यमयी मकसद है और जब तक वो उस मकसद को जान नहीं लेता, वो खुलकर नहीं जिएगा। बस दिन भर इसी उधेड़बुन में आनंद लगा रहता था। एक दिन उसे एक पुरानी दुकान में एक बहुत प्राचीन और जादुई किताब मिली और उस किताब के कवर पर लिखा था, जीवन का परम सत्य और आनंद, जिसे आनंद हमेशा से खोज रहा था। और इस किताब को देखकर आनंद की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सोचा कि इस किताब को पढ़कर वो अपने जीवन का रहस्य जान जाएगा और फिर अपनी जिंदगी को सबसे बेहतरीन तरीके से जिएगा। और वो उस किताब को लेकर अपने घर आ गया। किताब में हजारों पन्ने थे। आनंद ने उसे पढ़ना शुरू किया। किताब में बहुत कठिन भाषा में जीवन के नियम, ब्रह्मांड के रहस्य और दर्शन लिखे थे। आनंद दिन रात भूख प्यास भूलकर बस उस किताब को पढ़ने में लग गया। और इस दौरान उसकी पत्नी ने कई बार उससे कहा कि सुनिए, आज मौसम बहुत सुहाना है, चलिए ना नदी के किनारे टहलने चलते हैं। आनंद झुंझलाकर कहता है, तुम जाओ, मेरे पास अभी फालतू समय नहीं है, मुझे जीवन का सत्य खोजना है। उसके बच्चे उसके पास खेलने आते तो वो उन्हें भी डांट कर भगा देता कि वो उसकी पढ़ाई में खलल डाल रहे हैं। उसने दोस्तों से मिलना, त्योहार मनाना, यहां तक कि मुस्कुराना भी बंद कर दिया था। साल दर साल बीतते गए। आनंद बूढ़ा हो गया, उसके बाल सफेद हो गए, आंखें कमजोर हो गईं, हाथ कांपने लगे, लेकिन अब भी वो किताब के आखिरी पन्नों को समझने में जुटा था। आखिरकार जब जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर, जब वो बिस्तर पर मौत के करीब था, उसने उस किताब का आखिरी पन्ना खोला। उसे लगा कि आज उसे जीवन का गुप्त मंत्र मिल जाएगा जिसके बाद उसकी जिंदगी सफल हो जाएगी। और कांपते हाथों से जब उसने आखिरी पन्ना पलटा तो वो दंग रह गया। जानते हैं उस पन्ने में क्या था? वो पन्ना पूरी तरह से कोरा था, खाली था, उस पर कुछ भी नहीं लिखा था। बस नीचे कोने में एक छोटी सी लाइन लिखी थी और वो लाइन जानते हैं क्या थी? उसमें लिखा था कि ये किताब एक आईना है, इसके पन्ने खाली हैं ताकि तुम इस पर अपने जीवन के खूबसूरत अनुभवों की कहानी लिख सको। यानी कि ये जो पन्ना खाली छोड़ा गया है, ये आपके लिए है। इसमें आपको अपने जीवन के अनुभव की कहानी लिखनी है। असली जीवन इस किताब के शब्दों में नहीं था, बल्कि उस धूप में, उस अपनों की मुस्कुराहट में, उन पन्नों में था जिन्हें तुम पढ़ना छोड़कर जी सकते थे। आनंद ने जब ये पढ़ा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा कि उसके पास तो लिखने के लिए कुछ है ही नहीं इस कोरे पन्ने में। उसने खिड़की के बाहर देखा जहां बच्चे खेल रहे थे, चिड़िया चहचहा रही थी। उसे समझ आ गया कि जीवन क्या है। जब उसकी पत्नी ने कहा, आओ चलो टहलने चलते हैं, आनंद नहीं गया, बच्चों के साथ नहीं खेला। यानी कि जीवन के जो सुखद पल थे उसका तो उसने अनुभव लिया ही नहीं। उसे समझ आ गया था कि जीवन क्या है।
जीवन कोई पहेली नहीं थी जिसे सुलझाना था। जीवन तो एक अनुभव था जिसे हर पल जीना था। लेकिन अफसोस, जब तक वो ये समझता, उसका जीवन बीत चुका था। और यही आज का चिंतन है कि हम अक्सर कल को बेहतर बनाने के लिए जीवन का कोई बड़ा रहस्य खोजने के चक्कर में अपने आज को अनदेखा कर देते हैं। जीवन कोई मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर हमें खुश होना है। जीवन तो हर छोटे पल को खुलकर जीने का नाम है। आज को जिए, अपनों को समय दें, क्योंकि समय बीत जाने के बाद सिर्फ अफसोस रह जाता है।

जब तक मैं ये समझा जीवन क्या है, जीवन बीत गया। क्या खूबसूरत लाइन, क्या गहरी लाइन पंक्ति किसी ने लिखी है जो इंसान को अंदर तक झकझोर देती है। चिंतन। आनंद की जो कहानी थी हम सबको कुछ सिखाती है। दरअसल हम इंसानों की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि हम जीने की तैयारी तो बहुत करते हैं लेकिन जीना भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि जब अच्छी नौकरी मिलेगी तब खुश होऊंगा, सोचते हैं कि जब अपना घर बनाएंगे तब सुकून से बैठूंगा, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब अपनी जिंदगी जीऊंगा। और ऐसा करते करते

0: एक दिन घड़ी की सुइयां रुक जाती हैं। तो क्यों ना अफसोस करने के बजाय, क्यों ना आज के इस पल को ही पूरी शिद्दत से जी लिया जाए, ताकि जब आखिरी वक्त में हो तो ये सोचने का मौका ना मिले कि हाय जीवन यूं ही बीत गया, हमने तो कुछ किया ही नहीं। और इंसान का जीवन यकीन मानिए एक ही बार मिलता है, दोबारा मिलने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो बस जीवन को भरपूर जिए, यही था आज का चिंतन, आज का विचार। ये गाना चिंतन के साथ हमने भीगी पल के फिल्म से जोड़कर सुनवाया, और इस गाने को MG हशमत ने लिखा है। क्या खूबसूरत लिखा है और क्या खूबसूरत धुन बनाई है जुगल किशोर और तिलक राज ने। बहुत सारे साथियों ने आज के चिंतन को पसंद किया है, थैंक यू आपके मैसेजेस के लिए। महेंद्र पटेल जी क्रॉइडन से, एजाज जी चैसम से, बेल्जियम से प्रीति जी, हमारे राजेश जी बहुत सुंदर थैंक यू आप लिखते हैं, महेंद्र जी, राजीव पटेल जी, फतेह पटेल, ललित छत्री साहब, बुशी से जगदीश जी, अजन जी, शेखर जी, गिरीश जी, वंदना जी, निर्मला जी, रंजन जी, रागिनी जी, भरत गंगाराम, स्लाव से रानी जी, हरविंदर जी, थैंक यू आप सभी के मैसेजेस के लिए। उर्मिला पटेल, रोहित कहते हैं वाह क्या बात है, वेरी नाइस, थैंक यू। कैन से संध्या जी, सलमा जी, हंसा जी, नरेंद्र पांचाल, हेतु सोलंकी, बहुत लंबी लिस्ट है। ये दिखाता है कि हमारे साथी चिंतन को कितना पसंद करते हैं। थैंक यू सो मच आपके मैसेजेस के लिए। समय आ गया है कि आप चिंतन को समेटे और आगे बढ़ जाए।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो 1 पाउंड के बदले में आज आपको मिलेंगे 124 भारतीय रुपए। याद रखिए ट्रांसफर करवाना होगा via SBI branch online or by using the Yono SBI UK mobile app। और आपको फिर से याद दिला दें कि जून खत्म होने से पहले पहले आप 75 pounds का voucher everyday जीत सकते हैं when you send over 1000 pounds, also a 1 gram gold coin every week when sending over 2000 pounds. Terms and conditions do apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai Leica Gold.
3: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of immigration law, wills and probates, family law, personal injury and other legal requirements.
0: तो आज इक्वाडोर और जर्मनी के बीच में मैच है, और एक और मैच है क्यूरेकाओ और कोटे डिवोरोल मैच है। और आपको बता दें कि आज भूलिएगा मत, आपको 15 मिनट का फ्री लीगल एडवाइस मिलेगा विद अवर स्पॉन्सर्स रैकलो इफ यू मेंशन लाइका।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
4: Ye hai Leica Gold, 10:35 a.m.

0: क्या खूबसूरत गाना है और इस गाने में क्या ब्यूटीफुल लगी है सायरा बानो। और ये गाना उन सभी के नाम पर जाता है जो आज अपने बर्थडे या फिर अपना जन्मदिन मना रहे हैं। और एक मैसेज आया है मुझे, राजीव पटेल जी हमारे बहुत ही प्यारे लिसनर हैं, आपने बताया है कि चिंतन बहुत अच्छा लगा, हमारी सबकी लाइफ से जुड़ा हुआ था। और आपने हमें ये भी बताया है कि आज आपके डैड डॉक्टर धानजी भाई की 100वीं बर्थडे है, बट ही इज़ नॉट वेल, ही इज़ इन हॉस्पिटल। तो बस हम सब यही चाहेंगे कि वो ठीक हो जाए। और आज क्योंकि उनका जन्मदिन है तो ये गाना उनको डेडिकेट करते हैं। और आप सब उनका बहुत ख्याल रखिए, उनके पास ही रहिए और जल्दी वो ठीक हो जाए, ऐसी हमारी ईश्वर से प्रार्थना रहेगी। प्रोग्राम में आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद रेडियो लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स। ऋतु शर्मा आपके साथ है, ढेरों मैसेजेस आपके मिलते जा रहे हैं, बस यूं ही साथ देते रहिए, हम आपको यूं ही गीत सुनवाते रहेंगे। थैंक यू अनीता जी, स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में। एंड साकू जोशी जी और ऑफकोर्स जैस्मीन, अलका जी, रितेश, आप अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अगला गीत मेरी ओर से आप सबके लिए,
1: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
2: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
3: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: यस, लता जी के आवाज में ये आइकॉनिक गाना जब भी सुनते हैं मजा ही आ जाता है, और ये हाल सिर्फ मेरा ही नहीं आप सभी का है। ज्योति जी कहती हैं, वाओ रितु, थैंक यू फॉर प्लेइंग दिस सॉन्ग। हमारी तोशी जी को भी ये गाना बहुत पसंद आया है। सो आप सब, विनोद जी हमारे साथ हैं, तो जितने भी साथी साथ दे रहे हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बताती चलूँ कि प्रोग्राम के अगले हिस्से में होने वाला है एक इंटरव्यू।
1: Feel Good Track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो इंटरव्यू से मुझे याद आया कि हाल फिलहाल में ही मैंने आशुतोष राणा का इंटरव्यू लिया था। अब वो इंटरव्यू फेसबुक पर अवेलेबल है, मैंने अपने फेसबुक पर भी शेयर किया है, तो आप सुन सकते हैं कि आशुतोष राणा कितना अच्छी तरह से बात करते हैं, और उन्होंने मेरे सवालों का जवाब बहुत ही खूबसूरती से दिया और बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि इस प्ले में क्या होने जा रहा है, क्या होने वाला है, उनका कैरेक्टर क्या है, क्या हमें देखने को मिलेगा। बहुत सारी बातें उन्होंने बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे साथ की हैं। तो अगर आप चाहें तो उस इंटरव्यू को सुन सकते हैं मेरे फेसबुक या मेरे इंस्टाग्राम या लाइक अ गोल्ड फेसबुक, लाइक अ गोल्ड इंस्टाग्राम पर जाकर वो अवेलेबल है। और आज भी एक इंटरव्यू होने जा रहा है प्रोग्राम के अगले हिस्से में, और इस इंटरव्यू में हम बात करेंगे नितिन टेक चंदानी से, जो कि एक एंटरप्रेन्योर हैं और रोबोथिंक यूके के सीईओ हैं। रोबोथिंक यूके एक रोबोटिक्स और कोडिंग एजुकेशन कंपनी है जो बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल है। और बच्चों के लिए ये कैसे यूज़फुल है ये हम खुद उनसे जानेंगे और उनसे कुछ और सवाल पूछेंगे और उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। ये सब होगा प्रोग्राम के अगले हिस्से में, तो आप ज़रूर हमारा साथ देते रहिए।
1: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
0: तो लाइका एक्स्ट्रा का नया पॉडकास्ट ड्रॉप हो चुका है, और इस बार का टॉपिक है साउथ एशियन वुमेन इन स्पोर्ट्स। दीप राजा ने इसको होस्ट किया है। लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट आप सुन सकते हैं स्पॉटिफाई पर, यूट्यूब पर, अमेजोन पर जाकर, और इसके अलावा जितने भी मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं सभी जगह लाइका एक्स्ट्रा अवेलेबल है।
1: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
3: People across the country are feeling all warm and fuzzy about their heat pumps.
4: Installing it during the renovation was an easy call. The bathroom tiles, however.
5: It's much nicer than your boiler. The place is just always warm and cozy like.
6: The government grant was the help we needed to start upgrading.
5: You get a lovely steady temperature. Walking around without my slippers, are you?
3: Feel all warm and fuzzy inside with a £7,500 government grant towards your heat pump at gov.uk/clean energy.
7: Eligibility criteria apply. See website for details.
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
8: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
9: Travel Hub, best service with unbeatable price.
8: At all protected.
9: Visit TravelHubWorld.com.
10: Travel Hub best, sab kare test. Disha Rice ka hai zamana. Disha Basmati Rice.
9: Disha Rice now available at Asian grocery stores nationwide. Available at Sony Cash and Carry, Singsbury's, Kacha Bazaar, Samir Bazaar, More Foods, Sira South Hall, Dagenham Supermarket, all exotic stores in Reading and Slough, and Pick and Save, Canton Road. Disha Rice, come down and taste the difference.
11: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3344-24 Our line.
12: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.60% on non-withdrawable fixed deposits.
13: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
14: Location, location, location.
15: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
14: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
15: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
14: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
15: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
14: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
15: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
14: high appreciation
15: in Dubai.
16: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
17: No more worries for me or you.
18: Southall Travel, at all protected.
19: આ સપ્ટેમ્બર પેરિસમાં ઇતિહાસ લખાઈ રહ્યો છે.
20: BAPS મંદિરનું ઓપનિંગ અને સ્ટાર ટૂર્સ તમને લઈ જઈ રહ્યું છે આ પવિત્ર યાત્રા પર.
19: યુરોપના 3-9 દિવસના ટૂર્સ,
20: ફ્રાન્સ, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, ઇટલી અને જર્મની સાથે
19: દર્શન પણ અને યુરોપ પણ.
20: સીટ્સ જલ્દી ભરાઈ રહી છે, આજે જ બુક કરો સ્ટાર ટૂર સાથે.
19: કોલ 02089002323 ધ સ્ટાર ટૂર્સ.
20: ટ્રાવેલ વન્સ એન્ડ યુ વિલ ટ્રાવેલ અગેન એન્ડ અગેન.
21: ખાખરા ક્રંચ, ભાખરી મંચ, ચિક્કી સ્વીટ, પાપડ બીટ, Pickles Heat. Ye hai Jaimin Foods ka vibe check.
22: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra, namkeen, papad, pickles, chikki, pot meals and much more.
21: Jaimin Foods Desi Cravings. Available at nearest ethnic grocery stores.
23: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
24: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
25: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
24: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
25: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
24: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
25: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
1: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Like a Goon, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB Digital Radio par. Alexa pe bolo play Like a Goon aur online suno likeagoon.com pe.

0: लीजिए, बरेली के बाजार में झुमका तब गिरा था लेकिन आज तक झुमका ढूंढा जा रहा है और ये गाना लोगों को पसंद आ रहा है। और जानते हैं ये गाना जिसने बनाया था? मदन मोहन साहब। आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। माय मोस्ट फेवरेट कंपोजर मदन मोहन, जिन्होंने जाने कितने कितने सारे खूबसूरत गीत बनाए हैं और जिन्हें हम अक्सर ही सुनते हैं, पसंद करते हैं। तो आज इस गीत को बजाकर हमने उन्हें याद भी किया। आपके ढेरों मैसेजेस आए हैं जो याद दिला रहे हैं कि मदन मोहन के और भी गाने बजाइए, लेकिन अब देखती हूँ अगला गीत कौन सा बजता है। बट फिलहाल जल्दी से आपको याद दिला दे।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो भारत पैसा भिजवाने की सोच रहे हैं, आज 1 pound के बदले में आपको मिलेंगे 124.05 भारतीय रुपए। और ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा वाई SBI ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। लेकिन आपको याद दिला दें कि जून के खत्म होने से पहले पहले आप 75 pounds का वाउचर जीत सकते हैं एवरी डे वन यू सेंड ओवर 1000 pounds, ऑल्सो 1 gram गोल्ड कॉइन एवरी वीक वन सेंडिंग ओवर 2000 pounds। बट टर्म्स एंड कंडीशंस टू अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
0: तो चलिए अब बताते हैं आपको कि

0: गिफ्ट में उनकी बहुत हेल्प करती है। तो चलिए वो हमारे सामने बैठे ही हुए हैं, तो उनसे ही जान लेते हैं कि रोबोथिंग क्या है। लेकिन सबसे पहले नितिन जी, स्वागत है आपका शो में।
1: धन्यवाद ऋतु जी।
0: हाँ जी, तो हमारे जो लिसनर आपको सुन रहे हैं उनको बताइए कि रोबोथिंग क्या है, और आप उन्हें बताइए कि किस तरह से ये जो सामान्य कोडिंग होती है या फिर जो रोबोटिक क्लासेस होती हैं उनसे कैसे अलग है ये।
1: फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते टू ऑल आवर लिसनर्स एट लाइका गोल्ड। सो रोबोथिंग एक स्टेम कोडिंग एआई कंपनी है जो बच्चे लोग को सिखाती है थ्रू प्ले, राइट। हमारा फोकस ये नहीं रहता है कि बच्चे कुछ मेमोराइज करें या स्क्रीन के सामने बैठे रहें, बट उनको कोशिश करनी चाहिए ताकि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़े, उसके ऊपर हमारा मेन फोकस रहता है, ठीक है। सो चिल्ड्रन आर ऑलरेडी बॉर्न क्यूरियस, यू नो, लेकिन हम वो क्यूरियोसिटी को किल कर रहे हैं। हम बच्चों को जॉम्बी बना देते हैं, उनको आईपैड पकड़ा देते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है उनके क्वेश्चंस का आंसर्स देने का, ओके। रोबोथिंक उनको मौका देता है कि अपनी क्रिएटिविटी दिखाएं हमारे क्लासेस में। सो वी आर नॉट जस्ट टीचिंग चिल्ड्रन हाउ टू यूज़ टेक्नोलॉजी, बट वी आर ऑल्सो टीचिंग देम हाउ टू बिल्ड द फ्यूचर विद इट।
0: तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आज के जो बच्चे हैं उनके लिए, विशेष रूप से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए स्टेम, रोबोटिक्स, कोडिंग और ये जो एआई की जो टेक्नोलॉजी है, जो नॉलेज है, वो इतनी इम्पॉर्टेंट है?
1: देखिए, एआई जब से आया है वो हमारे ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है, ओके। जिस तरीके से मोबाइल फ़ोन आए थे, हम मोबाइल फ़ोन के बिना कहीं घर के बाहर भी नहीं निकलते, इसी तरीके से एआई टेक्नोलॉजी हर कंपनी में, हर काम में यूज़ होने वाला है, और ये सामान्य चीज़ हो गई है हर बच्चों के साथ। जितना जल्दी बच्चे इसको समझेंगे उतना ज़्यादा उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतना बेटर वो परफॉर्म कर पाएंगे लाइफ में, राइट। सो इसी वजह से यू नो अर्ली एक्सपोजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो इसको अगर मैं समराइज करूँ एक सेंटेंस में, आई वुड से चिल्ड्रन हु लर्न दी स्किल्स अर्ली will not just keep up with it, but they will lead in the future. That is very important.
0: और इसीलिए देखिए आजकल कई माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, क्रिएटिविटी हो, किसी भी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको सॉल्व करने की स्किल्स हो। तो ये बताइए कि ये जो रोबोथिंक जो है वो सिर्फ टेक्नोलॉजी सिखाने का एक ज़रिया है, या फिर आगे चल कर इन बच्चों को इन सब चीज़ों में, यानी कि क्रिएटिविटी और ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, उनको डेवलप करने में रोबोथिंक किस तरह से हेल्प करता है?
1: सी हम है ना, बचपन से बच्चे लोग को बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। अगर आपको मैं सामान्य रूप में एक एग्जांपल दूं, हम जब बच्चे लोग को साइकिलिंग सिखाते हैं तो बच्चे लोग एक्चुअली बैलेंसिंग सीखते हैं। हमको पता नहीं रहता कि बैलेंसिंग कब काम आएगा, लेकिन जब भी वही बच्चे हम स्कीइंग हॉलीडे पे लेके जाते हैं तो वो अच्छी तरीके से स्कीइंग सीखते हैं या बहुत जल्दी सीख जाते हैं क्योंकि उनको बैलेंसिंग आता है। इसी तरीके से स्किल्स बिकम क्रॉस ट्रांसफरेबल, ओके। तो रोबोथिंक ने क्या किया है, वो अभी 30+ कंट्रीज़ में चल रहा है, करीब 500,000 किड्स के साथ एवरी सिंगल डे वर्क करते हैं हम लोग, ओके। हमने चाइल्ड रिसर्च स्पेशलिस्ट, एजुकेशन स्पेशलिस्ट को मिल के एक प्रोग्राम बनाया है जो बच्चे लोग को स्किल्स सिखाता है। अब बच्चों को पता नहीं चल रहा है कि जब वो रोबोट बना रहे हैं तो वो एक स्किल सीख रहे हैं, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और जब उनकी ये स्किल डेवलप होती है, लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी डेवलप होती है, जब वो फ्यूचर में कभी भी नौकरी करेंगे या अभी पढ़ाई करेंगे, यू नो दे आर अ लॉट मोर ऑर्गेनाइज्ड, दैट स्किल गेट्स क्रॉस ट्रांसफर्ड अक्रॉस। सो इसी तरीके से रोबोथिंक इज ट्राइंग टू टीच चिल्ड्रन दैट फेलियर इज नॉट समथिंग टू फियर, इट इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स इनोवेशन, यू नो। सो ये हमारा मोटिव है।
0: तो आपने हमें बताया कि रोबोथिंक पूरे यूके में समर कैंप्स लगाते हैं और साल भर प्रोग्राम्स भी आपके होते रहते हैं, तो ज़रा बताइए कि उससे, मतलब जो पेरेंट्स उसमें अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं तो उससे बच्चों को क्या फ़ायदा हो सकता है?
1: सी यूके में पहले तो लोग सोचते हैं कि चाइल्ड केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो स्कूल हॉलीडे में हम बच्चों के साथ करेंगे, क्योंकि 6 हफ्तों का हॉलीडे, 6 हफ्ते आप घर पे बैठ नहीं सकते। सो रोबोथिंक हैज़ क्रिएटेड अ सेफ एनवायरनमेंट जहाँ बच्चे आते हैं, एवरी डे एक नया रोबोट बनाते हैं, कॉम्पिटिशन करते हैं, यू नो अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं एंड थिंग्स लाइक दैट। सो

0: It is a fun place for children, a safe place for children. However, the children are also learning to build future skills. जो उनको पता नहीं है कि जब वो कर रहे हैं ऐसा लीडर बोर्ड पे आ रहे हैं how good it is for them, right? So this is not just child care for holidays. This is future ready learning disguised in fun for children. और ये हम कर रहे हैं अभी अलग अलग जगहों में यूके में. हमारे पास मैनचेस्टर में है, मिल्टन कीन्स में है, टूवर्ड्स मेडवे में है, कैंट में, पिनर, हैरो, हॉन्जी, यू नो, सो नॉर्थ वेस्ट लंदन, नॉर्थ लंदन, और खूब सारे जगहों पे चल रहा है रोबोथिंक के क्लासेस.
1: जैसा कि हम देख ही रहे हैं कि रोबोथिंक जो है वो जो लोकल फ्रेंचाइजी पार्टनर्स के साथ पूरे यूके में फैल रहा है. तो आप ये बताइए कि ये रोबोथिंक कैसे एक बेहतरीन फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी है और बच्चे कैसे उससे जुड़ सकते हैं?
0: देखिए, पहले तो हमको ये पता है कि हर पेरेंट चाहता है कि अपने बच्चों के साथ हम कुछ सही करें, यू नो, कुछ अच्छा करें उनके लिए, राइट? हर स्कूल को रोबोथिंक जैसे प्रोग्राम्स की ज़रूरत है, क्योंकि यूके के अंदर स्टेम एजुकेशन प्रोग्राम्स काफ़ी कम हैं, राइट? एंड ऑल द चिल्ड्रन लव इट. तो एज अ बिजनेस रोबोथिंक की बहुत ज़्यादा डिमांड है आज के तारीख में. सो एनीबडी हु इज़ लुकिंग फॉर अ रोबोथिंक फ्रेंचाइजी, दे कैन टॉक टू कमल प्रभाकर जी, ओके, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं. और अब क्या होना है कि वी हैव गॉट अ टर्न की सोल्यूशन, ओके. तो सारा कुछ इट इज़ अ बिजनेस ऑफ द फ्रेंचाइज ओनर, बट दे आर नॉट अलोन इन बिजनेस. वी आर, हम उनके साथ रास्ते पे हर साथ देते हैं, उनको हेल्प करते हैं. सारा कुछ बना हुआ है सोल्यूशन, यू नो, करिकुलम से लेके मार्केटिंग से एवरीथिंग, ओके. सो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी.
1: तो आपने बहुत
0: सो द ओनली अदर थिंग आई विल ऐड इज, अगर किसी को जानना है रोबोथिंक फ्रेंचाइज के बारे में, दे कैन विजिट अवर वेबसाइट www.robothink.co.uk या कमल जी को ईमेल कर सकते हैं kamal@robothink.co.uk.
1: कमल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में?
2: हाँ रितु जी, हाँ, थैंक यू सो मच. आई मीन, व्हाट अ ग्रेट, यू नो, दिस इंटरव्यू. जो ये बोल रहे हैं ना रोबोथिंक का, इट इज सो अमेजिंग फॉर टुडेज चिल्ड्रन, नॉट ओनली फॉर टुडे चिल्ड्रन, फॉर इस फ्यूचर. और इसके में क्या है, फ्रेंचाइज बिजनेस. अगर आपके एरिया में देर इज़ नो फ्रेंचाइज ऑफ रोबोथिंक, देन आई शुड suggest you seriously think about it, and you could run, and it's not expensive. You can run your own business, and education is evergreen. So agar aapko koi inquiry hai, jaise Nitin ne bataya, to get in touch with us, and it is going to be amazing for the future. So do look into, do be serious. Agar aapne business chota shuru karna hai, to do think about the franchise. थैंक यू.
1: सो थैंक यू कमल जी, एंड थैंक यू नितिन जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे लिसनर्स के साथ शेयर की. थैंक यू समय देने के लिए.
0: धन्यवाद रितु जी फॉर हैविंग अस हियर.
1: थैंक यू. ये है लाइक

0: गुलजार की फिल्म जिसमें जितेंद्र थे, जया भादुड़ी थी और ये थी हमारे आज के आर्टिस्ट ऑफ द वीक का गीत जो है जितेंद्र।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: और गिरीश जी कहते हैं कि ये खूबसूरत नगमा मेरे नाम कीजिए, तो चलिए हमने आपके नाम पर किया।

0: लीजिए उदित जी और अलका नारायण, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में ये गाना किरण जी आपको डेडिकेट करते हैं। आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद रेडियो, जहां पर ऋतु शर्मा आपके साथ है, सिटिंग इन फॉर रवि शर्मा जी।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Laika Gold.
0: और आपको याद दिला दे कि भाई लाइका रेडियो नेटवर्क जी टीवी के साथ मिलकर लेकर आ रहे हैं माइथोलॉजिकल स्टेज शो हमारे राम, जिसमें जो होने जा रहा है 9 जुलाई से 12 जुलाई तक लंदन एवेंटिम अपोलो में, और इसमें आशुतोष राणा ने रावण का किरदार निभाया है और राहुल बच्चर बने हैं राम। तो अगर आपने अभी तक टिकट बुक नहीं कराए हैं तो जल्दी कीजिए।
3: ये है
4: Like a gold. This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.

0: tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
1: Manoranjan with Ravi Sharma. Like a
2: gold. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
3: तो आज 1 पाउंड के बदले में आपको मिलेंगे 124 भारतीय रुपए, 366 पाकिस्तानी रुपए एंड 161 बांग्लादेशी टकास.
4: Like a radio.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
3: So Gold Rate is 97.2 pounds per gram.
2: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
3: तो लीजिए आज का मेरा और आपका साथ बस यहीं तक. अगला गीत लेकर चलेगा न्यूज़ तक और न्यूज़ के उस पार आपका साथ देंगे बाली ब्रह्मवर्ष. लेकिन कल मैं आपसे फिर से मिलूंगी ढेर सारे गीतों के साथ, ढेर सारी बातों के साथ. और आज निर्जला एकादशी की आप सभी को ढेरों ढेरों बधाइयाँ, शुभकामनाएँ. आज गर्मी काफ़ी है, भारत में तो होती ही है इस समय गर्मी, लेकिन यहाँ पर भी गर्मी है. तो अगर आप व्रत रख रहे हैं तो भाई अपने खाने पीने का, खाना तो नहीं पीने का ज़रूर ध्यान रखिए. लेकिन ये तो निर्जला है, अब क्या कहूँ, बस आपको इसकी बधाइयाँ दे देती हूँ. तो कल होगी आपसे मेरी फिर से मुलाकात. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो.
5: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल. एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ. सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे.
6: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM.
7: London, you asked and it's happening. Aditya Garvi Garba Tour UK 2026.
8: Latke halo ne nandala.
7: At Watford Colosseum on Saturday 8th August is now sold out. But due to huge public demand, one more show has been added at the same venue.
8: Meetha khara, khara.
7: Watford Colosseum on Friday 7th August 2026. Leica Radio Network is proud to be the exclusive radio partner. Aditya Garvi live in London. Book now on AXS. Aditya Garvi live in London at Watford Colosseum. Book now.
9: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
10: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश. एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course lunch सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफर्ड. तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823.
11: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
12: Packed for the trip? Gifts? Passport?
13: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
12: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
13: Simzy?
12: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
14: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
15: वेलकम टू द जंगल.
16: फिल्म बिल्कुल फेक.
15: हमारी फिल्म आर्मी वाली
17: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है.
16: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो.
15: स्टार कास्ट है
16: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्षद वारसी, परेश रावल एंड यू. स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास.
15: अन्ना कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
16: वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास 26 जून.
15: तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना मैं
18: किस लिए फिल्म में. Location, location, location.
19: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
18: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
19: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
18: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
19: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
18: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
19: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
18: High appreciation.
19: In Dubai.
20: Hey, फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
21: Well, she is talking about Jaimin Food Potato Chips. Crunchy, tasty and total desi swad in char mazedar flavors.
20: Crunch cannot wait. So visit your nearest ethnic store and grab your Jaimin Foods potato chips now.
22: Think you might be overpaying for card payments? Most businesses don't realize until they compare. Send your latest statement to TW Pays and get a free comparison quote with the reply within 24 hours. Visit twpays.com/Leica or call 0203-129-9840.
23: Be part of a historic grand opening.
22: Experience the newly inaugurated BAPS Swaminarayan Mandir in Paris. A once-in-a-lifetime spiritual journey.
23: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
22: Departure 5th of September. Call now on 0203-773-6333.
23: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
24: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org. Assuming you want to get noticed.
2: Up next, Ballybrumbat with Gold Afternoons on Leica Gold.
1: Manoranjan with Ravi Sharma.

0: is Leica Gold across Greater London.
1: जी हाँ, के जहाँ मिल गया ये गाने उसी शख्स ने बनाए थे जिनको डिस्क्राइब किया जाता है एज वन ऑफ द मोस्ट मेलोडियस एंड स्किल्ड म्यूजिक डायरेक्टर्स ऑफ द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री एंड इमॉर्टल गजल्स को लेकर और कुछ कुछ गानों में जैज एंड ब्लूज का म्यूजिक डालते हुए ही वॉज सो टैलेंटेड. इन्होंने इतनी सारी तालीम तो नहीं पाई थी, इन्होंने थोड़ा सा संगीत सीखा हुआ था करतार सिंह जी से ड्यूरिंग हिज स्टे इन लाहौर. इनके बारे में अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है एक घंटा निकल जाएगा, लेकिन हम ऐसा करेंगे. इन दिस पर्टिकुलर आवर आई एम गोइंग टू प्ले ऑल हिज गुड पैपी सॉन्ग्स, हैप्पी सॉन्ग्स, एंड देन इन द सेकेंड आवर आई विल टेक यू बैकवर्ड्स टू द 1950s एंड अर्ली 60s where he has given us some of the most melodious songs of Lata ji, Rafi sahab, even Mukesh ji, Kishore Kumar ke saath inhone sab peppy gaane jo kiye the, main is hour mein ya to third hour mein aapko suna dunga, lekin Lata Mangeshkar ji ke saath jo kiye the gaane inhone, aaj ki tribute mein, Madan Mohan ji ki tribute mein, lag ja gale gaana nahi hoga. बिकॉज हज़ार बार बच चुका है. नैना बरसे रिम जिम नहीं होगा क्योंकि हज़ार बार बच चुका है. और झुमका गिरा रे वो भी गाना नहीं होगा. सो ऐसे गाने होंगे जिससे आप चकाचौंध हो जाएंगे. जी हाँ, तो आप सुनते रहिएगा ऑल दीज सॉन्ग्स एंड देन सेकेंड आवर में विल पिक इट अप विद सम नॉस्टैल्जिक सॉन्ग्स. सो यू आर इन for a beautiful, beautiful afternoon with me, Bali Brahmbhatt, on Gold Afternoons, available on 1035 medium wave, Google, Alexa, LeicaGold.com, now also available on Radio Player app. And it's the 353rd day of Leica Radio Midlands, जहाँ पे आप हमें सुन रहे हैं. मेरे शो के बाद 4 बजे आएंगे राजवीर, हु वॉज हियर यस्टरडे इन प्लेस ऑफ सैंडी शाह. एंड देन लाइका रेडियो मिडलैंड्स पे 4 से 7 बजे तक होंगे राजपतन.

1956 का भाई भाई फिल्म का, संग बाय गीता दत्त. दिस अपबीट विवेशियस ट्रैक रिमेन्स वन ऑफ मदन मोहन्स अर्लीएस्ट मेजर हिट्स. सुनिएगा.

0: द वर्सटाइल मदन मोहन, जिनके गाने आप सुनेंगे इस आवर, नेक्स्ट आवर एंड मे बी इन द थर्ड आवर टू. लिरिक्स आर बाय राजेंद्र कृष्ण.
1: फील गुड ट्रैक brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: The Leica Radio Network. The perfect soundtrack for a British summer heatwave.

0: करेंगे। जी हाँ, बरसों याद करेंगे ये कॉन्सर्ट। सिंगर हरिहरन इज रिटर्निंग टू द यूके विद अ स्पेशल वन ऑफ इवेंट सोल इंडिया ऑन सैटरडे 4th जुलाई एट रॉयल फेस्टिवल हॉल होस्टेड बाय बीना मिस्त्री। Get your tickets now at southbankcentre.co.uk, exclusive radio partner, Leica Radio Network. And this is the brainchild of Ashish Mathur, Avadh Hospitality Limited. Don't forget, Hariharan.
1: This is Leica Gold, a part of the number one Asian commercial radio network in Greater London. The Leica Group. Wake up to Kajal on breakfast at 6 a.m. and drive back with Sandy Shah at 4 p.m. Leica Gold. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
2: Gemin Foods sponsors Gold Afternoons. From dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
3: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल TravelHub 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com।
4: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
3: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: विजिट TravelHubWorld.com।
5: Dreaming of owning a property in Dubai? Now you don't need to fly thousands of miles to explore the opportunity. Dubai's leading real estate experts are coming to Quality Foods Hayes from the 27th to the 30th of June. Discover luxury investment options, exclusive registration waivers, residency support, and an incredible 0.25% monthly payment plan. Visit the Dubai Real Estate Stand at Quality Foods Hayes. Your future in the sun could start right here. 27th to the 30th of June. See you at Quality Foods Hayes.
6: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344. A 24-hour line.
7: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
8: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को। स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course lunch सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड। तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823।
9: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
10: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
9: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
10: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
9: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
10: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
9: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
10: ICICI Bank UK PLC is authorized by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
11: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
12: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
11: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
12: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
11: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
12: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
13: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com। T&Cs apply।
14: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है।
3: शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब हैं। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉग के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं।
14: 10 days to Turkey, guaranteed departure on 18th September. Book early to avoid disappointment. Visit sonatours.co.uk or call 0208-951-0111.
15: At Breast Cancer Now, we know checking your breasts can feel daunting. But it's as simple as TLC. Touch, look, check. Touch your breasts, look for any changes, check anything unusual with your GP. Anyone can get breast cancer, so it's important to check yourself regularly. Learn the signs and symptoms of breast cancer at breastcancernow.org/TLC.
1: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
16: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. चाहे यूरोप हो या दुनिया का दूसरा कोना, हर ट्रिप फील होता है द स्टार टूर्स एक्सपीरियंस। विजिट startours.co.uk.

0: हो तो क्या बात है, जरूरत है।
1: You're listening to Madan Mohan's music. Songs composed with such great changes. Ghazals देखो, even चटपटे गाने जो आप सुन रहे हैं, किशोर दा को फिल्म मनमौजी 1962 की फिल्म, एंड राजेंद्र कृष्ण की लिरिक्स,
0: सेवा करे जो पति की,
1: मदन मोहन।
0: जरूरत है, जरूरत है, सख्त जरूरत है।
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: Each currency equivalent to one sterling pound. US dollars 1.3177, Indian rupees 124.29, Pakistani rupees 366.89, Afghan Afghanis 83.60, and Kenyan shillings 170.72.
3: Leica Radio.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
4: Leica Gold.
2: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold is currently trading at £97.65 per gram.
2: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
5: का वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर।
2: दिस इज लाइका गोल्ड अक्रॉस ग्रेटर लंदन।
1: और ये भी खूबसूरत गाना आशा भोसले जी ने गाया मदन मोहन की तर्ज पे। वो कौन थी फिल्म का गाना मदन मोहन जी ने कंपोज किया, राजा मेहदी अली खान ने लिखा। सुनिएगा।

0: अंधेरे का इशारा समझो, अब तेरा दिल का जलाना होगा।
1: तुम बड़े वो हो, मुझे जाने दो।
0: जा सकोगी?
1: मुझे जाना होगा।
0: जाओ।
1: छोड़ो।
0: नहीं
1: छोड़ो ना।
0: आज की रात तो दिल तोड़ो ना।

0: जिंदगी वहाँ सेट्टो माइक्रोवेव फूड कंटेनर्स
1: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
2: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर
3: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
2: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन
3: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स
2: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50 प्लस एमिनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी
3: एंड द बेस्ट पार्ट टाउनहाउसेस एंड विलास ग्रीन्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £711,000
2: टू बुक कॉल आवर लंदन ऑफिस ऑन 02039635757 Greens by Danube Prime Location
3: High Appreciation
2: in Dubai
4: Hi Hello Get show mucho que tu dabena ashu tego arara public demand hariti aavi rahi chu london maro navu natak laine patni premier league એટલે કે PPL yes from 3rd july till 12th of july Wow! And this is being presented by Pankaj Soda Galaxy Shows. Yaad rakhjo!
3: Patni Premier League. Shows at Risley, Alberton, East and South London, Lorum, Leicester. For more information, call Deepa on 07947561947.
5: Kajal's Couture. For every celebration, every moment and every unforgettable entrance.
6: Discover Kajal's Couture Southall. The grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall. UB1 1LR.
5: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewellery, accessories and stylish outfits for men and women.
6: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
5: Kajal's Couture, Southall, where every occasion finds its perfect style.
6: Visit kajalscouture.co.uk.
7: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny and we still put cash back in your pocket.
8: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share and we give the rest back to you as cashback.
7: No fee, no gimmicks, real money back, a better rate and cash back from a broker that costs you nothing.
8: Call 0208 706 0915 for a free no obligation chat. That number once again 0208 706 0915 or visit cashbackremortgages.co.uk.
7: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.
9: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य BAPS स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ आप पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे जहां मड़शे शांति भक्ति अने आनंद अने साथे आईफिल टावर सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलीडेज कॉल करो 02037736333 मंत्रा हॉलीडेज व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा
10: मीनार ज्वेलर्स अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए meenarjewelers.com कॉल 02087677627
11: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी तो इंतजार मत कीजिए अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com T's and C's apply
12: Have you noticed the way fans shout at football matches
13: Oh wake up
12: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
14: Like a radio network. Proud hospitality partner. Ragasan.
15: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: हम चल रहे थे, वो चल रहे थे, मगर दुनिया वालों के दिल जल रहे थे। क्या लिखा राजेंद्र कृष्ण जी ने दुनिया ना माने फिल्म 1959।
1: स्पॉन्सर्ड बाय कोका नूडल्स, गुडनेस इन एवरी बाइट, ट्राई टुडे, अवेलेबल इन योर नियरेस्ट कन्वीनियंस स्टोर।
0: अगर मदन मोहन जी के राग आधारित गाने में चुनूं तो राग यमन में उनका जो गाना था भूली हुई यादें, मुझे इतना ना सताओ, फिल्म संजोग का। राग भैरवी में देखा जाए तो है इसी में प्यार की आबरू, अनपढ़ फिल्म का गाना। राग भीम पलासी में देखो तो नैनों में बदरा छाए, मेरा साया फिल्म का गाना। और जैसे मैंने एक गाना तो सुनाया राग रागेश्री में, कौन आया मेरे मन के द्वारे, ऐसे तो इतने खूबसूरत गाने इन्होंने राग आधारित गाने जो किए थे। लेकिन वक्त कम है, आगे सुनते हैं।
2: Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. Across London. This is Bali Brambat on Leica Gold.
3: Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Each currency equivalent to one sterling pound, US dollars 1.3196, Indian rupees 124.55, Pakistani rupees 367.4, Afghan Afghanis 83.91 and Kenyan shillings 170.94.
4: Leica Radio.
5: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Listen wherever you are by downloading the Leica Radio mobile app now. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £98.18 per gram.
5: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
6: London's biggest classics all day. This is Leica Gold.
0: फिल्म है अदालत। मदन मोहन जी को याद करते हैं 102nd बर्थ एनिवर्सरी।

0: ये गजल कौन गा रही
1: है? अरे हजूर, गजल उसने छेड़ी, मुझे साथ देना, जरा उम्रे रफ्ता को आवाज देना। आइए हजूर।
2: मजबूर बहुत करता है ये दिल का।
3: इसका वंस मोर आया था, इसलिए मैंने मुखड़ा सुना दिया हमारे कुछ दोस्तों के लिए। सुनिए।
4: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
5: You're listening to Bali Brahmat in Gold Afternoons. Gold Afternoons. Proudly sponsored by Gemin Foods. Quality, taste and tradition in every pack. Find your favorites at Asian shops near you. London, you asked and it's happening. Aditya Gadvi Garba Tour UK 2026.
6: Lattuke halone nandala.
5: At Watford Colosseum on Saturday 8th August is now sold out. But due to huge public demand, one more show has been added at the same venue. Watford Colosseum on Friday 7th August 2026. Leica Radio Network is proud to be the exclusive radio partner. Aditya Gadvi live in London. Book now on AXS. Aditya Gadvi live in London at Watford Colosseum. Book now.
7: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए। दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
4: साउथ हॉल ट्रेवल Auto protected.
5: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
8: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को। स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course lunch सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफर्ड। तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823।
9: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
10: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
9: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk. Show hosted by Bina Mistry.
10: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
11: Great news, Tariq Halal Raiders Lane is now open. Come and grab our incredible opening offers. Fresh chicken legs for just £2.99 per kilo or 5 kilos for only £10. But hurry, this amazing deal is available while stocks last. Plus, you'll find plenty of more fantastic offers in store. Visit us today at Tariq Halal Raiders Lane, 287 Raiders Lane, Pinner, HA5-5EJ. Quality, value and freshness only at Tariq Halal Raiders Lane.
12: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
13: जदों भी कॉमेडी मूवी दी गल हुंदी है तां एक मूवी दा नाम हमेशा आंदा है, ओ मूवी जिन्हें सब नू हसा हसा के लोटपोट कीता।
14: की कह रहे हो?
13: ओ मूवी जिदी स्टोरी ने ब्रेन रॉट कीता।
14: की कह रहे हो?
15: गिप्पी ग्रेवाल, बिन्नू टिल्लो, सरगुन मेहता फिर तो लेके आ रहे ने पंजाबी सिनेमा दी सब तो वड्डी फ्रेंचाइज कैरी ऑन जट्टा 4, जिथे एडवोकेट टिल्लो फिर कहेंगे
16: ओए टिल्लो ने काला कोट एवें नहीं पाया।
13: दिस 26 जून कैरी ऑन जट्टा 4 दे नाल थिएटर्स होंगे लाफ्टर दा स्टेडियम, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं, ये लाफ्टर दा फेस्टिवल है।
17: Location, location, location.
18: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
17: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
18: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
17: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
18: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
17: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
18: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location,
17: high appreciation
18: in Dubai.
14: Discover Malta and Gozo with a twin center island escape. Fly from a choice of UK airports year round and enjoy 3 nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
19: अपने business को UK के largest Asian commercial radio network पर advertise करने के लिए call करें. Like our radio sales on 0207 132 1458 या email करें sales@leicamedia.co.uk.
4: Across London, this is Bally Brambat on Leica Gold.
3: प्रतिभा जी, आपकी नजर

0: क्या खूबसूरत लिखाई राजा मेहदी अली खां, इन्होंने राइटर्स चुन चुन के लिए थे, राजेंद्र कृष्ण, राजा मेहदी अली खां।
1: Seven stations, one podcast, one mobile app. This is the Leica Radio Network.
0: Yes, the great Rafi Sahab.

वाह वाह वाह, मैं क्या बोलूं, गाने ऐसे ऐसे आ रहे हैं कि पुराने से नए गाने, लेकिन सब में दम होता है, क्योंकि ये है Like a Gold. That's right. अब सबके निकनेम्स होते हैं ना, जैसे कि मदन मोहन जी को इंडस्ट्री में मद्दी बोलते थे, एंड जैसे कि नदीम श्रवण के श्रवण जी नदीम जी को नद्दू बोलते थे, ऐसे सबके कुछ ना कुछ, जैसे चिंटू, कपूर फैमिली में बहुत सारे निकनेम्स होते हैं, एंड ऐसे ही आज एक लड़की है कपूर खानदान की, जिसको लोलो निकनेम से पुकारते हैं, एंड दैट इज करिश्मा कपूर. शी इज 52 टुडे, बोर्न ऑन 25th of June 1974 इन मुंबई. यस, दैट्स राइट. एंड करिश्मा वॉज द फर्स्ट वन इन द कपूर फैमिली हु ब्रोक द ट्रेडिशन ऑफ फीमेल्स नॉट एक्टिंग इन द कपूर खानदान. But then she proved that she was right. In fact, I would say Babita, her mother, proved the fact that she was right. Even Randhir Kapoor, who was against the idea of the two daughters acting, had to succumb to the idea, and he came back and he bowed down and sort of said, "You were right, I was wrong." So we wish Karishma Kapoor a very happy birthday today. एंड थैंक यू वेरी मच. वो जो कमेंट्स सबने पास की, फरीदा गुलाम अली जी ने ट्रिब्यूट सुना अपने मदन मोहन जी का, और उन्होंने कहा एन्जॉयड एवरी मिनट बाली जी. एंड वी गॉट ए जैज हु इज़ अ वेरी कीन लिसनर जस्ट लाइक फरीदा गुलाम अली जी. उन्होंने कहा लव्ड इट, ग्रेट ट्रिब्यूट. एंड पैमी सिंह जी, वो तो दीवाने हो गए जब मैंने कुछ कुछ गाने जो सुनाए मदन मोहन जी के, एंड उन्होंने कहा कि लव द लास्ट सॉन्ग, कौन सा था वो, पास्ट नेवर कम्स. शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, आई लव दैट कमेंट देयर. एंड रमा पटेल, अनदर वंडरफुल, शी सेड इट्स सो सैड यू कांट प्ले वीर ज़ारा. But then she enjoyed all the segregation. मैंने first hour में उनके मदन मोहन जी के peppy songs जो सुनाए थे, and then I again came down to the old songs of 50s and early 60s of मदन मोहन जी, और मैंने वो run of the mill जो

0: roundabout and then on to North Holt Station, queuing on the A406 North Circular Road southbound at the Hanger Lane Gyratory. A40 Western Avenue heavy westbound before you get to Gypsy Corner to the Tube, and severe delays on the Metropolitan line between Moor Park and Watford is due to cancellations, and minor delays on the Circle line, again, that's down to cancellations. That's your latest traffic and travel.
1: ये है लाइका गोल्ड, ये है लाइका गोल्ड।
2: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
3: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को। स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course lunch सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफर्ड। तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823।
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
4: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
4: High appreciation.
5: In Dubai.
6: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208-900-2323 or visit startours.co.uk.
7: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 kW बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड, और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
8: Lotto from the National Lottery now gives you 2 chances to win with every ticket. So it could be you, and it could be you. You, and then the same you, again. You. 1 ticket, 2 chances to win. New Lotto. It could be you, and it could be you. See website for lotto changes. Rules apply. Players must be 18 or over.
9: ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਮੇਡੀ ਮੂਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੂਵੀ ਜਿਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹਸਾ ਹਸਾ ਕੇ ਲੋਟਪੋਟ ਕੀਤਾ।
10: ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ?
9: ਉਹ ਮੂਵੀ ਜਿਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਨੇ ਬ੍ਰੇਨ ਰੋਟ ਕੀਤਾ।
10: ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ?
11: ਗਿੱਪੀ ਗ੍ਰੇਵਾਲ, ਬਿੰਨੂ ਢਿੱਲੋਂ, ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਫੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫ੍ਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4, ਜਿੱਥੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਢਿੱਲੋਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਗੇ
12: ਪਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ।
9: ਦਿਸ 26 ਜੂਨ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਥੀਏਟਰਸ ਹੋਣਗੇ ਲਾਫਟਰ ਦਾ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲਾਫਟਰ ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ।
13: चावल हो बेस्ट, सब करे टेस्ट, दिशा राइस का है जमाना, दिशा बासमती राइस।
14: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड, अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरी, सिंग्सबरीज, कच्चा बाजार, समीर बाजार, मोर फूड्स, सीरा साउथ हॉल, डेगनम सुपरमार्केट, ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाव एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड। दिशा राइस, कम डाउन एंड टेस्ट द डिफरेंस।
15: लंदन वालों ध्यान से सुन लो, के फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉगो के शोरूम्स में आइए या फिर kfurniture.co.uk पर जाएं।
1: Laika Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LaikaGold.com. Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
16: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit DairyValley.net.

0: पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए. दिस अ लवली ट्रैक इन द वोकल्स ऑफ किशोर दा एंड लता मंगेशकर फ्रॉम अदर मूवी हीरा पन्ना. तो था ना ये मजेदार गाना. वन मोर लवली ट्रैक in this hour in the vocals of Rafi Saab and Asha Bhosle. Well, you stay tuned because bahut sara pyara pyara music abhi bhi hai next hour, so stay tuned. I will be back with you next hour.
1: Forgotten memories refreshed like a gold.

0: देखो मैंने देखा है एक सपना, दिस ब्यूटिफुल लवली रोमांटिक ट्रैक इन द वोकल्स ऑफ लता मंगेशकर एंड अमित कुमार फ्रॉम द सुपरहिट मूवी लव स्टोरी. आई मीन दिस मूवी वॉज लाइक सुपर सुपर सुपर रोमांटिक एंड माई मॉम सेज दैट कुमार गौरव हैड एक्चुअली बिकम एन ओवरनाइट सेंसेशन. जैसे ऋतिक रोशन आफ्टर कहो ना प्यार है और आमिर खान आफ्टर कयामत से कयामत तक, सिमिलरली इवन कुमार गौरव हैड अ मेजर फैन फॉलोइंग. सब पागल हो गए थे उनके पीछे. वेल आई थिंक ही रियली रियली डिड अ गुड जॉब एंड ऑफकोर्स विजेता पंडित वॉज ऑल्सो सो सो सो क्यूट इन दिस मूवी. दिस वॉज देयर डेब्यू मूवी एक्चुअली. आई एम योर फिल्मी मुंडा वीर इन फॉर द लवली सैंडी शाह ऑन योर फेवरेट रेडियो स्टेशन लाइक अ गोल्ड रेडियो, लंडन नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन, अवेलेबल ऑन 10:35 AM एंड DAB इन ग्रेटर लंडन एंड वर्ल्ड वाइड ऑन LaikaGold.com, अलेक्सा एंड लाइका रेडियो मोबाइल ऐप.
1: झूठ बोला,
2: झूठ बोला,
1: सैंडी शाह ने झूठ बोला ऑन गोल्ड ड्राइव.
0: अच्छा तो वक्त हो चुका है फॉर सैंडी शाह ने झूठ बोला. अभी सैंडी शाह तो है नहीं, तो वीर ने झूठ बोला. ओके सो एक काम करते हैं, आई एम गोइंग टू गिव यू 3 स्टेटमेंट्स फ्रॉम दिस मूवी लव स्टोरी एंड यू गोइंग टू टेल मी कि वो कौन सा स्टेटमेंट झूठ है. ओके सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज लव स्टोरी रिलीज इन द ईयर 1981. सो स्टेटमेंट ए इज लव स्टोरी रिलीज इन द ईयर 1981. लव स्टोरी वॉज डायरेक्टेड बाय राहुल रवेल, दैट स्टेटमेंट बी. लव स्टोरी वॉज डायरेक्टेड बाय राहुल Well, that's statement B. And Kumar Gaurav's name in this movie was Bablu. So that's statement C. Kumar Gaurav's name in this movie was Bablu. So now you've got to message me and tell me inme se kaun sa statement jhoot hai.
1: WhatsApp message like a gold now on 0744 23 23 23. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: So your £1 in British sterling can get you up to 125

0: to locate your nearest branch.
1: T's and C's apply.
2: Ye hai Leica Gold, 10:35 AM.
3: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probate, and for other legal requirements.
4: Well, the match between South Africa and South Korea is interesting, where South Africa has scored one goal, and I am super excited for the other match between Ecuador and Germany, which is at 9 o'clock today. And of course, don't forget, you can get your 15 minutes free legal advice with our sponsors Rack Law if you mention Leica.
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
5: ये है
3: Leica Gold.
1: Leica Gold, traffic and travel.
6: This is Martin with your travel. The M4 is still heavy eastbound onto the elevated section as you head from Junction 3 Hayes to Junction 2 Brentford. A312, the parkway sluggish southbound before the M4 Junction 3. A312, Church Road and Mandeville Road, heavy from the White Hart roundabout to the Target roundabout and then on to North Holt Station. It's queuing on the A406 North Circular Road in both directions with the Hanger Lane gyratory. A40, Western Avenue, heavy westbound before Gypsy Corner to the Tube and severe delays on the Central Line. It's due to fire alert at Shepherd's Bush, and severe delays on the Metropolitan line between Moor Park and Watford, and minor delays between Amersham and Ricklesworth, and that's due to cancellations.
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
7: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे. कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस. कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश Tail on 0208-922-3344 24-hour line. The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
2: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
7: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk. Show hosted by Bina Mistry.
2: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
8: Sonatours.co.uk. This September, witness the opening of the BAPS Mandir in Paris on a 4 or 5 day tour. Book your journey of blessings and sightseeing with Sonatours. Call 0208-951-0111.
9: Khakra Crunch, Bhakri Munch, Chikki Sweet, Papad Beet, Pickles Heat. Ye hai Jaimin Foods ka vibe check.
10: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra, Namkeen, Papad, Pickles, Chikki, Pot Meals and much more.
9: Jaimin Foods, Desi Cravings. Available at nearest ethnic grocery stores.
11: जदों भी कॉमेडी मूवी दी गल हुंदी है ता एक मूवी दा नाम हमेशा आंदा है, ओ मूवी जिन्हें सब नू हसा हसा के लोट पोट कीता.
12: की कह रहे हो?
11: ओ मूवी जिदी स्टोरी ने ब्रेन रॉट कीता.
12: की कह रहे हो?
13: गिप्पी ग्रेवाल, बिन्नू टिल्लो, सरगुन मेहता फिर तो लेके आ रहे ने पंजाबी सिनेमा दी सब तो बड़ी फ्रेंचाइज कैरी ऑन जट्टा 4, जिथे एडवोकेट टिल्लो फिर कहेंगे
14: पर टिल्लो ने काला कोट एवें नहीं पाया.
11: दिस 26 जून कैरी ऑन जट्टा 4 दे नाल थिएटर्स होंगे लाफ्टर दा स्टेडियम, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं ए लाफ्टर दा
15: चावल हो बेस्ट सब करे टेस्ट, दिशा राइस का है जमाना, दिशा बासमती राइस.
16: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड, अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरी, सिंग्सबरीज, कच्चा बाजार, समीर बाजार, मोर फूड्स, सीरा साउथ हॉल, डेगनम सुपरमार्केट, ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाव एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड. दिशा राइस, कम डाउन एंड टेस्ट द डिफरेंस.
17: एवरी पेरेंट वॉन्ट्स देयर चाइल्ड टू ग्रो अप हेल्थी. HPV, the human papillomavirus, is a common infection that most people don't even know they have. However, it can lead to cancer in men and women. The HPV vaccine can stop this and is available for every child from age 12 and offers long-term protection with just one jab. Say yes to cancer prevention. Make an informed choice. Find out more at nhs.uk/HPV or contact your school.

0: तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, जी हाँ आपका साथ है तो मुझे क्या कमी है। दिस ब्यूटिफुल वाला गाना फ्रॉम द मूवी प्यासा सावन इन द वोकल्स ऑफ लता मंगेशकर। अच्छा मुझे नहीं पता था दैट दिस सॉन्ग इज सो लाइक्ड बाय एवरीवन। जब मैंने एक्चुअली ये दो ऑप्शंस रखे आपके सामने, आई हैड लाइक अ लॉट ऑफ पीपल जस्ट सेइंग तेरा साथ ऑप्शन ए। सो ऑफकोर्स दिस वॉज वे वे वे पॉपुलर एंड आई एम ग्लैड यू गाइज एंजॉय दिस सॉन्ग। मुझे लगा था कि मुझे ही ये गाना बहुत ज्यादा पसंद है। I mean, what beautiful lyrics, मौसमी चटर्जी एंड द लवली जितेंद्र इन दिस मूवी। जितेंद्र आर आर्टिस्ट ऑफ द वीक।
1: फील गुड ट्रैक ब्रॉट टू यू बाय डेरी वैली,
2: सॉफ्ट एंड टेंडर लाइक ग्रैंडमास वार्म हग। डेरी वैली पनीर इज मेड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एंड जीरो प्रिजर्वेटिव्स। विजिट डेरीवैली.net।

0: जिंदगी का साथ निभाता चला गया, दिस प्यारा वाला गाना इन द वोकल्स ऑफ रफी साहब फ्रॉम द मूवी हम दोनों। आई थिंक दे साहब वाज सो सो सो गुड इन दिस मूवी।
1: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. This is Leica Gold. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: गोल्ड travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com
1: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड
1: विजिट travelhubworld.com
2: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
3: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
2: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk. Show hosted by Bina Mistry.
3: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
5: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel. Prime location.
4: High appreciation.
5: In Dubai.
6: At Breast Cancer Now, we know checking your breasts can feel daunting. But it's as simple as TLC. Touch, look, check. Touch your breasts. Look for any changes. Check anything unusual with your GP. Anyone can get breast cancer. So it's important to check yourself regularly. Learn the signs and symptoms of breast cancer at breastcancernow.org/TLC.
7: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर
8: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना 5-course lunch सिर्फ £35 जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफर्ड तो देर किस बात की बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823
9: फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल अ देसी तड़का इज टोटल रिज है ना
10: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स
9: क्रंच कैन नॉट वेट सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ
11: द फ्यूचर बिलोंग्स टू क्रिएटर्स एट रोबोथिंक समर कैंप्स चिल्ड्रन बिल्ड रोबोट्स लर्न कोडिंग एंड फ्यूचर रेडी स्किल्स लाइक अवर लिसनर्स गेट 10% off full week bookings with code LIKA10. Kit package worth over £7,500. Visit book.robothink.co.uk/LIKA.
12: Sonatours.co.uk. This September, witness the opening of the BAPS Mandir in Paris on a 4 or 5 day tour. Book your journey of blessings and sightseeing with Sonatours. Call 0208-951-0111.
13: Minar Jewelers. अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं, तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए Minar Jewelers पर 181 Upper Tooting Road या विजिट कीजिए minarjewelers.com. Call 0208-767-7627.
14: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. This is the Leica Radio Network. You heard. The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our four stations on 0207 132 1458 or sales@leicamedia.co.uk.
15: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavours from around the world, you can make every meal memorable.

0: तू कर ले सितम, दिस अमेजिंग प्यारा वाला गाना फ्रॉम द मूवी सनम तेरी कसम. ऑफ कोर्स दिस इज द टाइटल ट्रैक इन द वोकल्स ऑफ किशोर दा एंड द म्यूजिक वाज बाय पंचम दा. अच्छा, पंचम दा एंड किशोर दा की जो जुगलबंदी थी ना वाज अमेजिंग. समटाइम्स किशोर दा वुड इंस्पायर पंचम दा एंड समटाइम्स ऑफ कोर्स पंचम दा वुड इंस्पायर किशोर दा. इसे कहते हैं जुगलबंदी. व्हाट अमेजिंग ट्रैक्स इन दोनों के.
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: So £1 in British sterling can get you up to 124 Indian rupees, 367 Pakistani rupees, 444 Sri Lankan rupees, 162 Bangladeshi taka, 83 Afghani afghans, 170 Kenyan shilling and approximately 1.32 US dollars.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Listen wherever you are by downloading the LIKA Radio mobile app now. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: So gold's trading at £98.10 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at East Ham, Hounslow or Crowley.

0: Like a Gold, traffic and travel.
1: This is Martin with your travel. The M4 is still heavy eastbound onto the elevated section from Junction 3 Hayes to Junction 2 Brentford. The A312 Church Road and Mandeville Road heavy from the White Hart roundabout to the Target roundabout and then on to Northolt Station. Queuing on the A406 North Circular Road in both directions at the Hangar Lane Charity. A40 Western Avenue heavy westbound before you get to Gypsy Corner, and congestion on the A316 Chertsey Road westbound from Twickenham Bridge to Hospital Bridge Road roundabout. To the Tube and severe delays on the Elizabeth Line between Hayes and Harlington and Heathrow Terminal 4 and between Hayes and Harlington and Heathrow Terminal 5 due to the hot weather conditions. And that's your latest traffic and travel.
2: Like a Gold. लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉगो के शोरूम्स में आइए या फिर kfurniture.co.uk पर
3: 105 सुपर हिट शोज पछी हवे लंडन मा आवी रह्यु छे एक धमाकेदार इंटरनेशनल गुजराती कॉमेडी जयज एंटरटेनमेंट लईने आवी रह्या छे सखणा रेजो हस्बंड जी लीना शाह अने समीर शाह साथे हास्यनी फुल गारंटी फ्राइडेज 26 जून 27 पाटीदार समाज वेम्बली पार्क मा रातना 8 वागे टिकट्स बुकिंग माटे विजिट करो eventbrite.co.uk कॉल करो वीडियो रामा अथवा कॉल करो मिस्टर बी 07860280655 सखणा रेजो हस्बंड जी।

मिलो ना तुम तो हम घबराए. दिस लवली ट्रैक इन द वोकल्स ऑफ लता मंगेशकर फ्रॉम द सुपर हिट मूवी हीर रांझा. और इस गाने के साथ ही वक्त हो चुका है फॉर मी टू से बाय बाय. वेल हमें राई प्यार के फिल्म मिलेंगे चलते चलते. इट्स टाइम फॉर द लवली अश्विनी. गिव हर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव. बाय. L Y C A.

0: जिन्होंने अभी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं द इवनिंग शो विद अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। थ्रिलिंग थर्सडे इवनिंग मनाएंगे साथ आप और हम पूरे 3 घंटे के लिए, शाम 7 से लेके 10 बजे तक। पूछे आप सबसे कैसे हैं आप सब, आई नो उफ गर्मी, हाई गर्मी के मैसेजेस बैक टू बैक आ रहे हैं आप सभी से। बस एक दो दिन और है ना, और फिर हम चलेंगे धीरे धीरे वापस 20s में। हिम्मत बना के रखिए, ओके, अपने जोश को बना के रखिए और होश में भी रहिए, बहुत सारा पानी पीजिए। भाई अटेंडेंस रजिस्टर खुल चुके हैं, आप लोग अपनी अपनी हाजिरी लगवा रहे हैं एंड हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ एक थोड़ा सा रैंडम, थोड़ा सा चटपटा सवाल, इफ़ यू फील लाइक दैट, ओके। सो पूरे 24 घंटे हमारे पास हैं, हमारी दिन की शुरुआत होती है, कई लोग सुबह 4-4:30 बजे उठ जाते हैं, कई लोग अपने अपने हिसाब से उठते हैं। अकॉर्डिंग टू यू विच इज द मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम आपके हिसाब से, कि दैट इज द बेस्ट यू कैन वर्क ड्यूरिंग द डे, ओके। सो फॉर मी सुबह 9:30 बजे से लेकर सुबह 11:30 बजे तक आई थिंक दैट इज द मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम फॉर मी। और अगर कहेंगे कि एन्जॉयबल टाइम कौन सा है, तो शाम का ये समय फिलहाल तो भी, कि आप लोगों के साथ में आके, बिकॉज दिस इज माई फेवरेट जगह, फेवरेट माइक एंड माई मोस्ट अमेजिंग लविंग favorite listeners around the globe. So yeah, this is my most favorite time of the day पिछले 2 महीनों से and productive time mornings. आपका productive time कब होता है, जब आपको लगता है this is the best energy, अभी जो है मैं best of best अपनी तरफ से दे सकती हूँ, दे सकता हूँ अपने काम के प्रति and पूरे होश और जोश में आप काम करते हैं and your happy time पूरे 24 घंटे में से, जरूर लिख के बताइए।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: For £1 in British sterling, you can get up to 124 Indian rupees and 20 paise. Send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be in to win a £75 voucher every day when you send over £1,000. Also, 1 gram of gold coin every week when sending over £2,000. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai Laika Gold.

0: बताइए।
1: ना ना पहले जरा आप मुस्कुराइए।
0: मुस्कुराने की न कोई बात है।
1: अजी देखिए तो क्या हसीन रात है।
0: ओहो काम तो बताइए बताइए।
1: ना ना ना पहले जरा

0: का सादा है।
1: बोलो बोलो।
0: आज लेना एक वादा है।
1: क्या?
0: आजा आजा शादी का इरादा है।
1: क्या?
0: शादी का इरादा है।
1: शादी
0: का इरादा है।
1: शादी ना बाबा ना।
0: मगर क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती हो?
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं
1: बाबा।
0: सुनो तो
1: ना,
0: सुनो तो सुनो तो। आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: आपने बुलाया किस लिए?
1: आए हैं तो काम भी बताइए।
0: पहले जरा आप मुस्कुराइए।
1: आप यहाँ आए किस लिए?
0: आपने बुलाया किस लिए?
1: अच्छा आए हैं तो काम भी बताइए।
0: पहले जरा आप मुस्कुराइए।
1: मुस्कुराने की न कोई बात है,
0: देखिए तो क्या हसीन रात है।

0: मैंने कहा काम तो बताइए।
1: काम?
0: हाँ।
1: काम सीधा साधा है, मेरा एक वादा है।
0: अच्छा?
1: प्यार को निभाओगे?
0: निभाऊंगा।
1: भूल को ना जाओगे?

0: Full Score Updates, brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probate, and for other legal requirements.
1: आज ग्रुप ई में दो कंट्रीज में जो मैच होने वाली वो शुरू हो जाएगी रात 9 बजे. क्यूरेसाओ एंड कोतिद्वा इनके बीच मैच होगा रात 9 बजे. एंड ग्रुप ई में एक्वाडोर एंड जर्मनी के बीच मैच होगा रात 9 बजे. डोंट फॉरगेट यू कैन गेट योर 15 मिनट्स फ्री लीगल एडवाइस विद आवर स्पॉन्सर्स रैक लॉ इफ यू मेंशन लाइक.
0: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.

0: मिला देंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है, 7:23, इट्स 23 minutes past 7. आप सभी ने ट्यून इन किया है द इवनिंग शो विद अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. द लास्ट ट्रेन थियरी, हर रोज ही हम इस समय किसी न किसी लाइफ थियरी के बारे में बात करते हैं. आज आप सबको मैं बताने वाली हूँ द लास्ट ट्रेन थियरी. तो होता ये है कि हम सभी की लाइफ में कोई ना कोई ट्रेन होती है जो शायद होती है आखिरी, लेकिन कई बार हम एक तो हिम्मत नहीं कर पाते और दूसरी बात कभी कभी लालची हो जाते हैं, ग्रीडी बन जाते हैं, हमें लगता है रुक जाते हैं ना, थोड़ी देर और ठहर जाते हैं, जो अगली ट्रेन आएगी उस ट्रेन में सवार होके आगे निकल जाएंगे. लेकिन कई बार वही ट्रेन जो होती है वो आपकी ज़िंदगी की आखिरी ट्रेन होती है. अगर सही समय के चलते अगर आप वो ट्रेन ले ले, उसमें चढ़ जाए, उसमें सवार हो जाए, तो शायद आपकी ज़िंदगी एक अलग मुकाम पे जाके पहुंचती है. यही चीज़ भी एप्लीकेबल है लोगों के बारे में कि आपकी ज़िंदगी में कुछ हसीन पल देने के लिए, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट देने के लिए आ जाते हैं कुछ ऐसे इंसान जो सेल्फलेसली आपके अपने बन के रहना चाहते हैं. बस डिसीजन आपका होता है कि वो जो साथी आपके साथ साथ निभाना चाहता है, आप उसका साथ ले लेते हो या फिर रुकते हो. देखते हैं और कोई आएगा, उनका साथ दे देंगे. लास्ट ट्रेन वक्त है, अभी भी सवार होना चाहते हैं सवार हो जाइए. एंड दिस इज एप्लीकेबल नॉट ओनली इन रिलेशनशिप्स, इन करियर, पैशन, बहुत सारी चीजों पे. तो लास्ट ट्रेन थियरी कैसी लगी जरूर बताइएगा.
1: दिस इज अश्विनी इन फॉर अनीसा नज़ीर ऑन द इवनिंग शो.
2: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
3: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को. स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course lunch सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफर्ड. तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823.
4: CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamari Ram.
5: Book your tickets now on eventimapollo.co.uk and use code Hamari Ram 10 for a 10% discount on all shows and tickets.
4: Exclusive radio partner, Laika Radio.
6: London, you asked and it's happening. Aditya Gadvi Garba Tour UK 2026.
7: Lattuke halone nandala.
6: At Watford Colosseum on Saturday 8th August is now sold out. But due to huge public demand, one more show has been added at the same venue. Watford Colosseum on Friday 7th August 2026. Laika Radio Network is proud to be the exclusive radio partner. Aditya Gadvi live in London. Book now on AXS. Aditya Gadvi live in London at Watford Colosseum. Book now.
8: Dreaming of owning a property in Dubai? Now you don't need to fly thousands of miles to explore the opportunity. Dubai's leading real estate experts are coming to Quality Foods Hayes from the 27th to the 30th of June. Discover luxury investment options, exclusive registration waivers, residency support, and an incredible 0.25% monthly payment plan. Visit the Dubai Real Estate Stand at Quality Foods Hayes. Your future in the sun could start right here. 27th to the 30th of June. See you at Quality Foods Hayes.
9: Packed for the trip? Gifts? Passport?
10: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
9: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
10: Simzy?
9: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
11: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
12: Welcome to the jungle.
13: Film? Bilkul fake.
12: Hamari film army wali. और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है।
6: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो।
13: और स्टार कास्ट है
6: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्षद वारसी, परेश रावल एंड यू स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास।
14: अन्ना कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
6: वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास 26 जून।
15: तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना
16: मैं किस लिए फिल्म में?
17: Kajal's Couture for every celebration, every moment, and every unforgettable entrance.
18: Discover Kajal's Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
17: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewelry, accessories, and stylish outfits for men and women.
18: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
17: Kajal's Couture Southall, where every occasion finds its perfect style.
18: Visit Kajal's Couture. .co.uk
19: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply।
4: Like a Gold, London का नंबर 1 एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर। एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइका गोल्ड और ऑनलाइन सुनो lykagold.com पे। Feel good track brought to you by Dairy Valley.
20: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

देखो कसम से, देखो कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ। तुम भी जलोगे, हाथ मलोगे, रूठ के हमसे हाँ। देखो कसम से, कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ। तुम भी जलोगे, हाथ मलोगे, रूठ के हमसे।

0: कहो भी हमसे लौट ठहर गए हम, कुछ कहो भी हमसे बन के न चलिए तन के न चलिए, कहते हैं तुमसे हाँ तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ।
1: देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ।
0: हाय

0: फिर मजा आ गया ना आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में तुमसा नहीं देखा, इस फिल्म से लिया यादों की बारात में ये गीत आप सबके लिए। 1957 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। अच्छा ये गीत जो है हमारा जो द लास्ट ट्रेन थियरी आपको सुनाई उस पे कहीं ना कहीं कनेक्टेड लगता है ना ये वाला, देखो कसम से हाँ कसम से रूठ के रहोगे यू नो हाथ मलोगे। यस इट इज ओके। तो मैंने आते से आप सबसे पूछा था कि आपके हिसाब से आप सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव कब होते हैं और आपका हैप्पी टाइम कब होता है, तो सबने बहुत ही प्यार से अपने अपने प्रोडक्टिव टाइम के बारे में बताया है। मैंने कहा था कि मेरा प्रोडक्टिव टाइम होता है 9:30 to 11:30 राइट, एंड साइंस एंड वर्क डेटा पिन पॉइंट कि 10 बजे से लेके 11 बजे तक इज द मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम ऑफ द डे फॉर द एवरेज पर्सन। ड्यूरिंग दिस मिड मॉर्निंग विंडो कोर बॉडी टेम्परेचर राइजेज एंड कॉग्निटिव अलर्टनेस जो होती है वो भी पीक पे होती है, जिसकी वजह से आपका ध्यान आपका कॉन्सेंट्रेशन आपका फोकस जो है वो बिल्कुल एक जगह रहता है और जो भी आप काम करते हैं ना वो फैंटास्टिकली आप पूरा करते हो द एब्सोल्यूट पीक। स्टडीज कंसिस्टेंटली पॉइंट टू अ स्पेसिफिक विंडो बिटवीन 10:22 AM to 10:26 AM एट द मोमेंट ऑफ पीक मेंटल शार्पनेस फॉर डीप फोकस एनालिसिस एंड स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। तो अगर आपको कोई एग्जाम देनी हो है ना ऑनलाइन 10:22 AM से 10:26 के बीच में जाओ बच्चा, बड़े अच्छे से पास हो जाओगे। और ये तो मैं तो यहाँ पे भविष्य बताने लग गई भाई। ओके एंड द मॉर्निंग ब्लॉक्स रफली 75% ऑफ पीपल फंक्शन बेस्ट बिटवीन 9 AM एंड 11 AM। यार ये ना एक्चुअली मैंने आप सबको ये सवाल पूछ लिया एंड उसके बाद में आई जस्ट थॉट व्हाई नॉट टू फाइंड आउट कि एक्चुअली प्रोडक्टिव टाइम कब होता है। मैंने ऐसे ही मतलब रैंडमली सवाल पूछ लिया और उसके बाद जब मैंने ये ढूंढा, जब मैंने इसको गूगल किया तो देखो ना कितनी सारी इन्फॉर्मेशन आई है, क्या बात है, फैंटास्टिक। हाँ कॉन्ग्रेचुलेशन, जो इन्होंने जो टाइम बताया ना साइंस ने जो प्रूव किया है और जिस पे स्टडी हुआ अच्छे से, अगर आप उसी ब्लॉक में आते हैं तो बहुत बढ़िया जी, आप बड़े फोकस्ड और कॉन्सेंट्रेशन से अपने अपने काम कर सकते हैं। अच्छा गीतों में मज़ा आ रहा है ना, और भी फैंटास्टिक गीत आप सबके लिए यहाँ पे लाइंड अप है। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी, थ्रिलिंग थर्सडे मना रहे हैं आप और हम, और आप सबने ट्यून इन किया है द लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। बिल्कुल बताते रहिए प्रोडक्टिव टाइम है ना, बिल्कुल मजा आ रहा है मुझे पढ़ने में।
1: नमस्कार, रवि शर्मा रोज आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ मंडे टू फ्राइडे, जुड़िएगा मेरे साथ 10 से 1 बजे के बीच मंडे टू फ्राइडे मनोरंजन विद रवि शर्मा।
2: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. This is Ashwini, in for Anissa Nazir, on The Evening Show.
1: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
3: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: विजिट travelhubworld.com।
4: चावल हो बेस्ट, सब करे टेस्ट, दिशा राइस का है जमाना, दिशा बासमती राइस।
5: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड, अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरी, सिंग्सबरीज, कच्चा बाजार, समीर बाजार, मोर फूड्स, सीरा साउथ हॉल, डेगनम सुपरमार्केट, ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाऊ एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड। दिशा राइस, कम डाउन एंड टेस्ट द डिफरेंस।
6: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
7: Great news, Tariq Halal Raiders Lane is now open. Come and grab our incredible opening offers. Fresh chicken legs for just £2.99 per kilo or 5 kilos for only £10. But hurry, this amazing deal is available while stocks last. Plus, you'll find plenty of more fantastic offers in store. Visit us today at Tariq Halal Raiders Lane, 287 Raiders Lane, Pinner, HA5F5EJ. Quality, value and freshness only at Tariq Halal Raiders Lane.
8: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
9: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को. स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course lunch सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड. तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823.
10: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
11: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.
12: From breathtaking wedding jewellery to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewellers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewellers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
2: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
7: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. Start with BAPS Swami Narayan Mandir Darshan in Paris, then explore Europe's most iconic destinations. Call today on 0208 900 2323.

0: जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं द इवनिंग शो विद अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। स्वागत है जी आपका इस सेकेंड आवर में, वेलकम, दिस इज द सेकेंड आवर। तो बहुत ही मेलोडियस गीतों के साथ में हमने आगाज किया इस आवर का। पहला था नहीं ये हो नहीं सकता, कुमार सानू एंड साधना सरगम की आवाज़ में बरसात फिल्म से। 90s वाले बच्चे, इफ़ यू रिमेंबर बरसात फिल्म, बॉबी देओल की घनी घनी जुल्फें एंड ट्विंकल खन्ना, राइट, इस फिल्म में शायद वही थी। एंड ओह माय गॉड, सेकंड वाज माय फेवरेट ट्रैक, ये वादा रहा फिल्म से। 1982 में ये फिल्म रिलीज हुई, तू तू है वही। थ्रिलिंग थर्सडे में कौन सा गीत लाई हूँ, अभी थोड़ा टाइम है, उसके पहले आपकी और हमारी गपशप होने वाली है, कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे कुछ ही देर में।
1: Tune in to Leica Gold, London's number one Asian retro station on the Leica Radio mobile app with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: एक पाउंड के बदले आपको मिलेगा 124 इंडियन रुपीज एंड 20 पैसे। एंड सेंड मनी टू इंडिया वाया एसबीआई योनो ऐप और ब्रांच बिफोर एंड ऑफ जून एंड बी इनटू विन 75 पाउंड्स वाउचर एवरी डे व्हेन यू सेंड ओवर 1000 पाउंड्स। आल्सो 1 ग्राम ऑफ गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर 2000 पाउंड्स। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.com।

0: Football Score Update, brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probate, and for other legal requirements.
1: FIFA World Cup में 9 बजे शुरू होने वाला है क्यूरेसाओ एंड कोटी दिव्या के बीच में मैच 9 बजे एंड ग्रुप ई में इक्वाडोर एंड जर्मनी के बीच मैच शुरू होगा रात 9 बजे. डोंट फॉरगेट यू कैन गेट योर 15 मिनट्स लीगल एडवाइस विद आवर स्पॉन्सर्स रैक लॉ इफ यू मेंशन लाइका.
0: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: When you're facing a serious parenting dilemma, Tesco Whoosh has you covered. Babe, we're running low on nappies.
3: We hear your cry, Sarah.
2: And theirs. Your Whoosh driver is already on it, delivering anything you need from Tesco from as little as 20 minutes. Because no new parent should have to face a poon army without backup. Tesco Whoosh, for when you seriously need groceries fast. Fees apply. Delivery times range from 20 to 60 minutes. Selected areas only. Pricing specific to Whoosh. See tesco.com/whoosh.
0: This is Ash Winnie, in for Anissa Nazir, on The Evening Show. Like
4: Come together for a meaningful cause. Shri Kutch Satsang Swaminarayan Temple, Canton Harrow and St. Luke's Hospice Harrow proudly present the annual Starlight Walk, Saturday 27 June from Byron Hall starting at 7:30 PM. Taro ke niche saath walk kariye aur local community mein end of life care ke liye support dijiye. Register today and receive a special discount using code LIKA10. Details ke liye visit kare skssd.org or follow St. Luke's Hospice on social media. Radio partners LIKA Radio.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location.
5: High appreciation.
6: In Dubai.
7: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए. दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाईलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
8: विजिट mantrahollidays.co.uk और कॉल 0203773633 नाउ. एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज. व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा.
9: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
10: Great news, Tariq Halal Raiders Lane is now open. Come and grab our incredible opening offers. Fresh chicken legs for just £2.99 per kilo or 5 kilos for only £10. But hurry, this amazing deal is available while stocks last. Plus, you'll find plenty of more fantastic offers in store. Visit us today at Tariq Halal Raiders Lane, 287 Raiders Lane, Pinna, HA5 5EJ. Quality, value and freshness only at Tariq Halal Raiders Lane.
11: मीनार ज्वेलर्स. अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए minarjewelers.com. कॉल 0208-767-7627.
12: जदों भी कॉमेडी मूवी की गल होती है तो एक मूवी का नाम हमेशा आता है, वो मूवी जिन्हें सबनों हंसा हंसा के लोटपोट किया.
13: वो
12: मूवी जिसकी स्टोरी ने ब्रेन रॉट किया.
14: गिप्पी ग्रेवाल, बिन्नू टिलो, सरगुन मेहता फिर तो लेके आ रहे ने पंजाबी सिनेमा दी सब तो बड़ी फ्रेंचाइज कैरी ऑन जट्टा 4, जिथे एडवोकेट टिलो फिर कहेंगे
15: और टिलो ने काला कोट ऐवे नहीं पाया.
12: दिस 26 जून कैरी ऑन जट्टा 4 दे नाल थिएटर्स होंगे लाफ्टर द स्टेडियम, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं, ये लाफ्टर द फेस्टिवल है.
13: Lycagoon. Officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and Lycagoon.com.
16: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
17: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: the track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Ye hai
3: Laika Gold.
2: Laika
0: Ashwini in for Women's Cricket Updates, presented by Kamal Pumaka and brought to you by TW Pays. If you're overpaying on your card terminal, we'll show you the truth and cut your costs.
4: And RoboThink, where children don't just use technology, they learn to build it. robothink.co.uk/Laika.
5: जी, वुमेन्स क्रिकेट अपडेट के लिए आपको सीधे ले चलते हैं कमल प्रभाकर जी, जो हैं हमारे क्रिकेट संवाददाता. कमल जी, कैसे हैं आप और वहाँ पे कैसा एटमॉस्फेयर है, जरा बताइए हमारे सारे लिसनर्स को.
6: गुड इवनिंग जी, वेरी गुड, इट्स रियली नाइस नाउ, इट्स अ गुड इवनिंग. बट दे पहले तो बड़ी गर्मी थी, बहुत हॉट एंड बॉदर्ड, एंड ऑब्वियसली वी हैड टू फैंटास्टिक मैचेस टुडे. You know, Bangladesh took on India.
5: Mm-hmm.
6: They both needed two points to go forward with 6 points. At the moment, they both got 4 points each. So Bangladesh 136 for 8 in 20 overs,
5: mm-hmm.
6: or India 139 for 5. And so they won the game and they got the 2 points. So they're on to 6 points. And then we got a game going on now at the moment. South Africa put a mountain of score there. Mantle of runs, 208 for 1 in 20 overs. Netherlands are chasing, but I don't think they'll get there. 38 in no loss in 5 overs. But pata kya hai, actually, the cricket is played at the next level.
5: Mm.
6: And the fitness, and it's amazing. Hats off to the women and all the women in the cricket playing in the World Cup. They are a great ambassador to the world, I would say. And amazing. So we'll have the updates later today, and we'll have more important games coming in tomorrow, day after. So it's getting very interesting now.
5: Fantastic, Kamal ji. We are all looking forward for all the updates from you. Please take care of yourself in this hot weather. Okay, ji?
6: Thank you. Have a lovely evening.
5: Thank you, Kamal ji.
0: This update was brought to you by TW Pays. Visit twpays.com/Laika for a chance to win a free card terminal. T's and C's apply.
4: And RoboThink. This summer, give your child a head start in AI, robotics and coding. Places are limited. Save 10% on full week summer camp bookings with code LAIKA10 at participating locations. Book now at robothink.co.uk. Terms apply.
5: मिला लेते हैं घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है. 37 minutes past 8. आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. दिस इज़ द इवनिंग शो विद अश्विनी. ओके, तो हम सभी जो हैं फ्लाइट में ट्रैवल करते रहते हैं, और फ्लाइट में जब ट्रैवल करते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो हम सभी कॉमनली एक्सपीरियंस करते हैं कि हमारी टेस्ट बड जो है वो डल हो जाती है. स्वीट एंड सॉल्टी फ्लेवर जो है ये हमें 30% अलग लगते हैं, वीकर लगते हैं इन द एयर. दिस इज़ वन रीज़न प्लेन फूड ऑफन टेस्ट ब्लैंड, बिकॉज हमारी टेस्ट बड जो है उस समय ऐसी डल सी हो जाती है. अल्कोहल कैन फील स्ट्रॉन्गर. अल्कोहल डज नॉट बिकम मोर पोटेंट, बट लो ऑक्सीजन लेवल्स, ड्राई केबिन एयर एंड फटीग कैन मेक दिस इफेक्ट फील स्ट्रॉन्गर. योर स्किन ड्राइज आउट. एयरप्लेन केबिन्स आर वेरी ड्राई, ऑफन अराउंड 10-20% ह्यूमिडिटी. दिस कैन लीव योर स्किन, आईज, नोज फीलिंग डिहाइड्रेटेड. Your ankles can swell. Sitting for a longer periods can reduce circulation and allow fluid to build up in your lower legs and feet. Your ears pop. This happens when cabin pressure changes faster than your ears can adjust. और ये बेसिकली एयर प्रेशर के लिए कई लोग जो हैं ईयरबड्स भी यूज़ कर लेते हैं उस टाइम पे. ईयरबड्स नहीं, दोज कॉटन प्लग्स. इट्स नॉट ईयरबड्स, इट्स इट्स द ईयर प्लग्स विच दे यूज. योर सेंस ऑफ स्मेल ड्रॉप्स. ड्राई केबिन एयर अफेक्ट्स योर नोज विच कैन रिड्यूस योर सेंस ऑफ स्मेल. सिंस स्मेल शेप्स फ्लेवर, फूड कैन सीम बहुत ज़्यादा डल. Anxiety can spike. Flying can raise stress levels for some people and the cabin environment may make it feel worse. ये सारी चीज़ें होती हैं, इसके पीछे reasons भी होते हैं, air pressure भी होते हैं कई बारी, उस वजह से हमारे कानों में वो ऐसे तरह कान एकदम टुप से बंद हो गए, टप से खुल गए. ओके, सो टप एंड टुप वाली फीलिंग हम सभी ने ली है. इमोशन ऑफ द डे, थ्रिलिंग थर्सडे. आय हाय, बहुत ही प्यारा गाना अनुपमा फिल्म से आप सभी के लिए.
0: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
7: Hey there, main hoon Bali Brahmbhatt. Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, ansuni baatein, raag adharit gaane on Leica Gold and Leica Radio Midlands from 1 p.m. to 4 p.m.
8: Emotion of the day.

0: Extra podcast update.
1: एपिसोड नंबर 21 आ चुका है. साउथ एशियन वुमेन इन स्पोर्ट्स होस्टेड बाय दीप राजा. ब्रेकिंग बैरियर्स इन मेल डोमिनेटेड फील्ड. व्हाई रिप्रेजेंटेशन मैटर्स. बहुत सारी चीज़ों पे और भी बात हुई है. एंड लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल है स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स.
0: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर. दिस इज अश्विनी इन फॉर अनीसा नज़ीर ऑन द इवनिंग शो. travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com.
2: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
2: विजिट travelhubworld.com.
3: London, you asked and it's happening. Aditya Gadvi Garba Tour UK 2026.
4: Natke halo ne nandala.
3: At Watford Colosseum on Saturday 8th August is now sold out. But due to huge public demand, one more show has been added at the same venue. Watford Colosseum on Friday 7th August 2026. Leica Radio Network is proud to be the exclusive radio partner. Aditya Gadvi live in London. Book now on AXS. Aditya Gadvi live in London at Watford Colosseum. Book now.
5: Welcome to the jungle.
3: Film bilkul fake.
5: Hamari film army wali.
6: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है.
3: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो.
5: और स्टारकास्ट है
3: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्षद वारसी, परेश रावल एंड अ ह्यूज स्टारकास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास.
7: अन्ना कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
3: वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास 26 जून.
8: तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना
9: मैं किस लिए फिल्म में.
10: Kajal's Couture for every celebration, every moment and every unforgettable entrance.
11: Discover Kajal's Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
10: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewellery, accessories and stylish outfits for men and women.
11: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
10: Kajal's Couture Southall, where every occasion finds its perfect style.
11: Visit Kajal's Couture. .co.uk.
12: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
13: चावल हो बेस्ट, सब करे टेस्ट, दिशा राइस का है जमाना. दिशा बासमती राइस.
14: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड. अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरी, सिंग्सबरीज, कच्चा बाजार, समीर बाजार, मोर फूड्स, सीरा साउथ हॉल, डेगनम सुपरमार्केट, ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाव एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड. दिशा राइस, कम डाउन एंड टेस्ट द डिफरेंस.
0: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. Ashwini, brightening up your weeknights.
1: Ye hai Leica Gold, 10:35 AM.
0: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: For £1, you'll get 124.69 Indian rupee, 366.51 Pakistani rupee, 443.61 Sri Lankan rupee, 162.08 Bangladeshi taka, 84.47 Afghan Afghani, 170.8 Kenyan shilling, 1.31 US dollars.
15: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
9: great. Brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold is currently trading at £98.46 per gram.
9: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
1: मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है. इट्स 49 मिनट्स पास्ट 8. अब जरा बात हो जाए फटाफट गुड न्यूज अराउंड द वर्ल्ड जिसके बारे में कोई बात नहीं करता. द नेदरलैंड्स इज क्लोजिंग प्रिजंस एज क्राइम रेट्स फॉल. ओवर 20 हैव शट डाउन सिंस 2009. Supermarkets in Thailand are replacing plastic with banana leaves. Luxembourg makes public transport free nationwide. Kya baat hai? In a major win for animal welfare, Prada has officially ended its use of real fur. Fantastic. Spain becomes the first country in Europe to offer paid menstrual leave. Kudos. A landmark moment for Mexico's parliament achieves to have 50% female representation. Whoa, standing ovation. Austria built giant electric towers shaped like animals. One symbolic sculpture for every region. Kya baat hai? The ozone layer is recovering faster than expected, set to return to normal by 2040 and 2060. So, ऐसी पॉजिटिव न्यूज के बारे में जब बात करते हैं तो अच्छा लगता है कि अच्छा, मतलब कुल मिला के जहाँ में कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें भी हैं. ओके, इस आवर के आखिरी गीत की तरफ बढ़ रहे हैं आप और हम. दिस इज़ द इवनिंग शो विद अश्विनी. लास्ट आवर, आखिरी आवर की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं. और भी फैंटास्टिक आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट मैंने लगा रखी है. दिस इज़ नॉट अ रिक्वेस्ट शो, नॉट अ फरमाइश शो. सो मैं आप लोगों के लिए, आप लोगों की तरफ से कोई फरमाइश नहीं ले सकती, लेकिन आई एम श्योर जो प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए यहाँ पे अपलोड की है वो आप सबको ज़रूर पसंद आएगी.
9: Leica Radio Network, broadcasting across Greater London. This is Ashwini, in for Anissa Nazir, on The Evening Show.
0: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
16: ट्रांसफर मनी होम एंड टर्न every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
17: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
16: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
17: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
16: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
17: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
16: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
18: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
19: હલો, કે છો? હું છું કેતી દવે અને આ શું થઈ ગયું? અરર, પબ્લિક ડિમાન્ડ ફરીથી આવી રહી છું લંડન મારું નવું નાટક લઈને, પત્ની પ્રીમિયર લીગ એટલે કે PPL. યસ, From 3rd July till 12th of July. Wow! And this is being presented by Pankaj Soda Galaxy Shows. Yaad rakhjo!
20: Patni Premier League. Shows at Ryslip, Alberton, East and South London, Lorum, Leicester. For more information, call Deepa on 0794756194.
21: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
22: Mango season has arrived. You're also with Jaimin's Mango Pulp.
2: No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
21: Jaimin Foods Mango Pulp available now.
4: आ सितंबर पेरिस मा इतिहास लिखाई रह्यो छे.
22: BAPS मंदिर नो ओपनिंग अने स्टार टूर्स तमने लई जाई रह्यो छे आ पवित्र यात्रा पर.
4: यूरोप ना 3 થી 9 દિવસ ના ટૂર્સ.
22: ફ્રાન્સ, સ્વિટ્ઝર્લેન્ડ, ઇટલી અને જર્મની સાથે.
4: દર્શન પણ અને યુરોપ પણ.
22: સીટ્સ જલ્દી ભરાઈ રહી છે. આજે જ બુક કરો સ્ટાર ટૂર સાથે.
4: કોલ 02089002323. ધ સ્ટાર ટૂર્સ.
22: ટ્રાવેલ વન્સ એન્ડ યુ વિલ ટ્રાવેલ અગેન એન્ડ અગેન.
23: Backstage Siblings, first ever UK performance happening on the 9th and 10th of October 2026 at SKLPC Northolt. Get your tickets now at sklpc.com/BSS.
24: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए. लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज. रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड. जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com.
25: द इवनिंग शो विद अश्विनी.
26: This is the number one Asian commercial group in London, consisting of Leica Radio and Leica Gold.
27: Is nagri ki reet hai ulti.

0: Twinny, brightening up your weeknights.
1: Welcome, this is the third and the last hour of the evening show with Ashwini. इस आवर का आगाज हमने किया दो बहुत ही बेहतरीन गीतों से, पत्थर के फूल, लता मंगेशकर एंड एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाज में, तुमको तुमसे जो देखते ही, एंड सेकेंड ट्रैक वॉज लता मंगेशकर एंड किशोर कुमार की आवाज में मशाल फिल्म से मुझे तुम याद कर रहा मेलोडियस ट्रैक, फैंटास्टिक ट्रैक, और भी बहुत ही मेलोडियस ट्रैक्स आप सभी के लिए लाइंड अप है यहीं पे। आपका और मेरा साथ रहता है मंडे से फ्राइडे तक शाम 7 से 10 बजे तक। यूहू, कल होगा फैंटास्टिक फ्राइडे जब आरजे अश्विनी बन जाती है यो यो डीजे अश्विनी। सच में यो यो नहीं होता है, मतलब हम लोग सारे ऐसे गाने लेके आते हैं जहाँ पे आपके पैर थिरकते हैं। ओके, आई नो अभी भी आपके पैर थिरकते हैं, लेकिन आप जब ड्राइविंग कर रहे हैं प्लीज़ ध्यानपूर्वक, ओके, सावधानीपूर्वक सेफली गाड़ियाँ चलाएं, म्यूज़िक को ज़रूर इन्जॉय करें, क्योंकि तात्पर्य जो है, इंटेंशन इस शो का यही कि आप लोग इन्जॉय करें, है ना? बिल्कुल अपनी मन की बातें खोल के हमें बताएं, एंड शो से रिलेटेड जो अलग अलग फीचर्स आपके लिए लेके आते हैं उसके बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी ज़रूर बताएं।
0: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: For £1 in British sterling, you can get up to 124 Indian rupees 20 paise. Send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be in to win a £75 voucher every day when you send over £1,000. Also, 1 gram of gold coin every week when you're sending over £2,000. Terms and conditions apply.
0: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Leica Gold.

0: चलिए मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। इट्स 27 मिनट्स पास 9, 9:27। आप सभी ने ट्यून इन किया है द इवनिंग शो विद अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। अच्छा जी, चलो आपको खुश करने के लिए कुछ बताती हूँ, ठीक है। सो कल फ्राइडे एंड परसों सैटरडे, कोई नई बात नहीं बता रही, लेकिन नई बात इसके बाद वाली क्या होने वाली वो बताती हूँ। तो कल होगा मैक्सिमम 34 डिग्री टेम्परेचर, सैटरडे को होगा 30 डिग्री एंड संडे ऑनवर्ड्स ओ जी शावा शावा से माहिया शावा शावा, क्योंकि हम लोग अपने 20s वाले टेम्परेचर में चले जाएंगे। 25 एंड 24 में हम लोग खेलेंगे उस टेम्परेचर में, उस समय मिनिमम टेम्परेचर होगा 14 डिग्रीज। तो देखो मैंने अच्छी खबर सुनाई ना जाते जाते, अभी कुछ देर तो और हूँ, लेकिन बस कल का देना ओके है ना। यू ऑल आर गुड चिल्ड्रन है ना ऐसे हमारी स्कूल की टीचर बताती थी ना। तो दीदी ने देखो आपको खुश खबर सुना दी है अभी कि बस दो दिन और, ठीक है ओके। आर्टिस्ट ऑफ द वीक में जितेंद्र जी की फिल्म से सुना रहे हैं आपको ये गीत, उसके बाद में गजल एंड कवाली को मैंने मिक्स करके कुछ गवल शब्द बना दिया। ओह दैट्स अ न्यू शब्द, गजल या कवाली मैं क्या सुनाने वाली। तो आज आप सबके लिए मैं गजल लेके आई हूँ।
1: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena, Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
2: Kajal's Couture, for every celebration, every moment and every unforgettable entrance.
3: Discover Kajal's Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
2: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewellery, accessories and stylish outfits for men and women.
3: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
2: Kajal's Couture Southall, where every occasion finds its perfect style.
3: Visit Kajal's Couture. .co.uk।
4: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड, और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com। T&Cs अप्लाई।
5: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब हैं। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉग के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं।
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
7: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Daniel. Prime location,
6: high appreciation
7: in Dubai.
2: Teachers, tutors or educators ke liye ek special opportunity. RoboThink UK expand kar raha hai. Become a confirmed franchise partner and receive a robotics kit package worth over £7,500. Parents can also save 10% off on full week summer camps with code LAIKA10. Visit book.robothink.co.uk/LAIKA.
8: Backstage Sibling, first ever UK performance happening on the 9th and 10th of October 2026 at SKLPC Northolt. Get your tickets now at sklpc.com/BSS.
9: Leica Gold, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB Digital Radio par. Alexa pe bolo play Leica Gold aur online suno leicagold.com pe.
10: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: Puzzle. Feel good track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: ये है
3: लाइका गोल्ड।
4: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल। एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे।
0: दिस इज अश्विनी इन फॉर अनीसा नज़ीर ऑन द इवनिंग शो।
5: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
4: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
5: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: विजिट travelhubworld.com।
6: Every morning a shopkeeper opens his doors.
7: Lights on, shutters up, staff ready.
6: But today's customers don't start on the high street.
7: They start on their phones, scrolling Instagram, watching TikTok, searching Google.
6: And if your business isn't there, they don't walk past your shop.
7: They walk into your competitors.
6: Social media today decides who gets seen and who gets forgotten. Is your business part of the conversation or invisible? Visit HeartyHanks.com before your competitors do.
7: Hearty Hanks. Thanks, the digital agency that doesn't play safe.
8: Welcome to the jungle.
9: Film, बिल्कुल fake.
8: हमारे film army वाली.
10: और उसके लिए आप सभी को training की ज़रूरत है.
9: Danger, एकदम real और survival skills zero.
8: और star cast है.
9: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्षद वारसी, परेश रावल and a huge star cast bring jungle madness to cinemas.
11: अन्ना, कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
9: Welcome to the jungle in cinemas 26 June.
12: तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना मैं।
13: मैं किस लिए फिल्म में?
14: Think you might be overpaying for card payments? Most businesses don't realize until they compare. Send your latest statement to TW Pays and get a free comparison quote with the reply within 24 hours. Visit twpays.com/Leica or call 0203-129-9840.
15: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208-900-2323 or visit startours.co.uk.
16: At Breast Cancer Now, we know checking your breasts can feel daunting. But it's as simple as TLC. Touch, look, check. Touch your breasts, look for any changes, check anything unusual with your GP. Anyone can get breast cancer, so it's important to check yourself regularly. Learn the signs and symptoms of breast cancer at breastcancernow.org/TLC.
0: Leica Radio Network, proud hospitality partner.

0: Leica Gold.
1: Location, location, location.
2: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
1: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas.
2: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 02 03963 5757. Greens by Danio, prime location,
1: high appreciation
2: in Dubai.
3: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे. कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस. कॉन्टैक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 02089223444 24 आवर लाइन.
4: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए. दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
5: विजिट mantrahollidays.co.uk or call 02033736333 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
6: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
7: Are we there yet?
8: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
7: Relax. I've booked the Uber already.
8: How? My roaming isn't even working yet.
7: I switched to Simzy before we left London.
8: Simzy? Since when are you the tech expert?
7: Since I decided I want a stress-free holiday.
9: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
10: T's and C's apply.
11: जदों भी कॉमेडी मूवी दी गल हुंदी है तां एक मूवी दा नाम हमेशा आंदा है, ओ मूवी जिन्हें सब नू हसा हसा के लोटपोट कीता.
12: की कह रहे हो?
11: ओ मूवी जिदी स्टोरी ने ब्रेन रॉट कीता.
12: की कह रहे हो?
13: गिप्पी ग्रेवाल, बिन्नू टिनो, सरगुन मेहता फिर तो लेके आ रहे ने पंजाबी सिनेमा दी सब तो वड्डी फ्रेंचाइज कैरी ऑन जट्टा 4, जिथे एडवोकेट टिलो फिर कहेंगे
14: और टिलो ने काला कोट एवें नहीं पाया.
11: दिस 26 जून कैरी ऑन जट्टा 4 दे नाल थिएटर्स होंगे लाफ्टर द स्टेडियम, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं ए लाफ्टर द फेस्टिवल है.
15: क्लासिक नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर.

0: Non-stop classics. Like a gold, London.
1: Travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on Travelhubworld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call Travelhub 24/7 on 0208-782-8833 or visit Travelhubworld.com.
2: Travelhub, best service with unbeatable price.
1: At all protected.
2: Visit travelhubworld.com.
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
3: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
4: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
3: high appreciation
4: in Dubai.
5: 105 super hit shows pachi have London ma avi rahyu chhe ek dhamakedar international Gujarati comedy Jay's Entertainment. Laine avi rahya chhe sakhna rejo husband ji. Leena Shah ane Sameer Shah saathe hasya ni full guarantee. Fridays 26 June 27 Patidar Samaj Wembley Park ma ratna 8 vage. Tickets booking mate visit karo event price. .co.uk call karo videorama athwa call karo mr b 07860280655 sakhna rejo husband ji
6: welcome to the jungle
7: film bilkul fake
6: hamare film army wali
8: aur uske liye aap sabhi ko training ki zarurat hai
7: danger ekdam real aur survival skills zero
6: star cast hai
7: akshay kumar sunil shetty arshad varsi paresh rawal and a huge star cast bring jungle madness to cinemas
9: anna kabhi baap janam mein bhi kisi ne gun pakda tha kya
7: welcome to the jungle in cinemas 26 june
10: chalo tum dono ko to aise phatke marunga na
11: main kis liye film mein
12: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 से पूरी तरह फिटेड और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी तो इंतजार मत कीजिए अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com T's and C's apply
13: Ears are great aren't they one on each side of your head for stereo It's because of ears that radio ads can amplify your advertising. 40 million adults listen to commercial radio every week. That's 80 million ears, give or take. See radio differently at radiocentre.org.
14: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे तो दुबई के लिए तैयार यू डू द पैकिंग दे डू द प्लानिंग कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410 दैट्स 8574-8410 साउथ हॉल ट्रेवल At all protected.
0: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
15: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइका रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@leicamedia.co.uk
16: सारी रात बॉलीवुड क्लासिक्स का साथ सिर्फ लाइका गोल्ड पर